इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

अभी आप श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

ससुरा जागू इंस्ट्रुमेंटाजी ताड़ी सोडादा सोडादा पंजार कामिसा दिकन कमेंटार यंग बर जुड़ूज आयुर्वेद मनिंकात कन कसहजातरन तोताज इकुत जा कमेंटार आयुर्वेद आटाजा सिस्टम पंग अवातन ट्रेडिशनल इंडिया यंग सुडा बदुसिया रिबुअंता हूं बदपकस पड़ा पन्य इंबांगन तुबु पिकिदान दन जीवा मजे पयमाकन पंगवतन हर बज दन परुवाहन गया हिडुप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दयम बबर पक संपतन सुडा मन्यतकन ब आयुर्वेद मुदिपकन सिस्टम यंग होलिस्टिक टन पमदिन तसुडा मंबंतु कमंतजन आयुष उन्तुक मन्यतति सिस्टम सिस्टम पंग अवतन ट्रेडिशनल तर्मसु सिद्ध यूनानी योगा जन होम्योपति सबगई जनगण बसर बगी इंफ्रास्ट्रक्चर जयनन कसतन प्रधानमंत्री सुडा मदस्मिकंडन मजतकन बतु प्रथम बगी सजुमजा इंस्टीट्यूसी जयनन कसतन ट्रेडिशनल दिया मदस्मिकन तह कदुआ दरी इंस्टीट्यूसी आयुर्वेद प्रथम डी इंडिया याकनी और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रधानमंत्री सुडा मजन सुन प्रचार यू विन यंग मन डिजिटाइजेशन प्रोसेस वैक्सीन असी मुंबेदिकन मान फात बगी इबू हामिर जनबाई पनिंकतन डिजिटाइजेशन नियकन समकिन मुंबद बाई की फैसिलिता से जैनन कसेतन पाक मोदी सुडा मजतकन बतु प्रथमा बगी दुआ इंस्टीट्यूट पनर्जितन पुसत अतव संचार रिसर्च इंस्टीट्यूट जीबीडंग योगा जन नेचुरोपति यंग बर्यकसिजी खोजदा ओडिशा जन रायपुर छत्तीसगढ़ दिया जुगा मर्यातकन बतु प्रथम बगी एम्पात पुसत कोंगुयन अतव सेंटर ऑफ एक्सलेंस जी निपेद अहमदाबाद गुजरात उन्तुक पद अंकात मेडिस निपेद हैदराबाद तेलंगाना उन्तुक बाहन बाकुआबाद बल्क ड्रग्स निपेद गुवाहाटी आसाम उन्तुक फिटो फार्माका सता निपेद महाजी पंजाब उन्तुक पनमोहन जन पंगम बांगन अबात एंटीबैक्टेरिया जन एंटीवायरस प्रधानमंत्री सुडा मर्जन चुका एम्पात पुसात कोंगुजन आयुष ए तु पुसात कोंगुजन उन्तु डायबिटीज जन गंगवन मेटाबॉलिक डिंजा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पुसात कोंगुजन दजम आयुष बद कल्याण जुतान उन्तु सजुसी टेक्नोलॉजी चंकी जुकुंगान बगी प्रदूषण रिंतिसन अतो स्टार्टअप सता सजुसी बद कल्याण जुतान नेट जीरो उन्तु आर आसाहु हादिस डी आई आई टी डी पुसत कोंगुजन उन्तुक पनरितन फंडामेंटल जन चांस रियासियोनल दजम आयुर्वेद जी सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जन पुसत कोंगुजन मंगनई आयुर्वेद जन पंग अवतन सिस्टम अथवा सिस्टम मेडिसिन डी जे एन यू न्यू दिल्ली सभागी जनगण बसत बगी निषेध मेक इन इंडिया डिग सकता कौशलतन प्रधानमंत्री मदस्मिकान जिमा प्रयोग डी पावर्स के मा प्रोडक्शन यिंग इनिशिएटिव उन्तु पदंकात मेडिटन बहन बाकुआबाद डी भापी हैदराबाद बेंगलुरु काकीनाडा जन नयागढ़ प्रधानमंत्री मोदी सुडा जुगा मयुंचुकन सभा कंपनी नेशनल बताजुक देश की प्रकृति परीक्षण अभियान गुणा मनिंकातकन कसदरन कसेतन जिन कयंगन मसेदकत प्रधानमंत्री मनिंतकन बा दयम दुआ बयास तहम तदय जुमरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अतो एम सुडा मनिंकात दरिये नाम मंजरी दुआ पिर्दुआ इंस्टीट्यूसी इंडिया सुडा मंगाड़ सी सिस्टम मेडिस मॉडर्न नमून पड़ासात यंग समा जुगा बदबगी दंगन ध्वनिया वरिशन रिपन तहन बरूपा आयुर्वेद सिद्ध योगा पंगवतन हर्बल जन सुपर फूड प्रधानमंत्री मोदी मनिया पैकन बाबा पेम जन आरोग्य योजना अतो पेम जय मधुपकन सजासतु स्केमा जयनन कसेतन गति स्तर बसर जी दुनिया स्केमा इनी बतु जुआन मनिया डियाकन जयनन कसहतन गति स्तंगन निजय हिंगा यमादातुस रिबू पताउन किनी मान फत सबु सुडा दीपयुआस चकुबन्या बगी सजुदु मस्यदकत यंग बदुसिया तुजुपुजु तहन कतास पमदिन ताकन मनंगुं कबुतुहन कसेतन बगी

0: ¿Y tú estarías de que te di no que te vayan ustedes para decir ya ustedes? Harap anda sura ni que mati ya gui tú. Barikutina camisa de can uanza dan discusi dayam atas puerta ya it. Yang barikutini ni que mati ya.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. On the first anniversary of Operation Sindoor, now we bring you a special program on India's firm response against terrorism and unparalleled valor of Indian armed forces.
3: On the intervening night of 6th and 7th May 2025, when the world was sleeping, Pakistan was jolted out of sleep and caught off guard. The skies roared and the missiles screeched over the terror camps of Pakistan, and Pakistan occupied Jammu and Kashmir. For 22 minutes, the sky was lit by the commitment of India to safeguard every inch of its territory, be it land, air, or water. The commitment to track and hunt down terrorists came directly from the Prime Minister.
4: ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers.
3: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
5: "A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
3: 100 terrorists were killed in the strike. Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashvani as well.
6: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है।
7: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post midnight, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
8: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
9: इंडियन आर्मी कैरीज आउट मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर ऑन 9 टेरर टारगेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर।
3: फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, व्हाइल ब्रीफिंग द मीडिया अबाउट द ऑपरेशन, अनाउंस्ड दैट इंडियाज रेस्पॉन्स वॉज फोकस्ड, measured and non-escalatory in nature.
10: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
3: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
11: "हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति

0: तोलम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई

0: दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमरीका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी

0: दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes India-Vietnam role in global supply chain.

0: करेंगे। वियतनाम के सदर तो लैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरी तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतादिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीरे आला और नायब वज़ीरे आला को भी तकरीब के लिए मदऊ किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस की मीटिंग होगी, जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे, क्योंकि ये तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या न देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरतेहाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टियों ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का यह फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसा नाइके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की कयादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलम्बो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इकोनिज़ाम में तआवुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इकोनिज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तआवुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चैम्बर के चेयरपर्सन डॉक्टर एम जे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मियारे जिंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकतदारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का यह कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اب 14 نکات پر مشتمل امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے. مجوزہ فریم ورک میں لڑائی روکنے اور حتمی مذاکرات کے لیے 30 دن کی مدت کی بات کہی گئی ہے, جبکہ ایران کے

0: में प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलात पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाज़ह है क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में यह कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौमे फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक विफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदामात किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीकाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वुजरा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 8:45 और 16 सेकंड। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे इंदिरा मुखर्जी से ठुमरी राग मिस्र भैरवी और राग दादरा राग मिस्र पीलू।

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में सुन रहे थे इंदिरा मुखर्जी से ठुमरी राग मिश्र भैरवी और दादरा राग मिश्र पीलू। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख और वाचन रामानुज सिंह सुंदरम।
1: विश्व के इतिहास में अनेक महापुरुषों ने अपने अपने अनेक महान कार्यों से अपने इतिहास रचे हैं। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह जैसे अनमोल विचार प्रदान किए हैं और शांति का अद्भुत मार्ग दिखाया है। उनके संपूर्ण जीवन का संदेश था प्रेम, शांति, अहिंसा, सद्भाव, समानता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वाभिमान। वे सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतीक थे। उनके विचार सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, प्रेम, साहस और आत्मिक नैतिक बल पर केंद्रित है। उनकी सादगी और सत्याग्रह द्वारा अहिंसक विरोध उन्हें विश्व के अन्य नेताओं से अलग करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। उन्होंने आगे कहा कि उनके साहसी विचार युगों के लिए प्रेरणादायक हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। महात्मा गांधी का प्रभाव केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि तत्कालीन विश्व राजनीति पर उनका गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। उन्होंने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और हिंसा के विरुद्ध संघर्ष के लिए सत्याग्रह और अहिंसा का नया अनमोल विचार विश्व को दिया। औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों के लिए प्रेरणा। महात्मा गांधी का औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ विश्व के अनेक देशों की स्वतंत्रता के मार्ग प्रशस्त किए। उनके विचारों का प्रभाव वियतनाम में हो ची मिन्ह पर भी पड़ा। एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक देशों में मुक्ति संग्राम के आंदोलन जोर पकड़ने लगे। उन्होंने आत्मबल के द्वारा निहत्थे राष्ट्रों में जन जागरण के प्रयास किए और साबित किया कि एक निहत्था राष्ट्र भी अपने आत्मबल के द्वारा बड़े साम्राज्य को झुका सकता है। वैश्विक अहिंसा और शांति का संदेश। वैश्विक शांति आंदोलन युद्धों को समाप्त करने, हिंसा कम करने और विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। ये आंदोलन अहिंसक प्रदर्शनों, परमाणु निरस्त्रीकरण और गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से संघर्षों को सुलझाते हैं। इसमें नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं जो संघर्ष की रोकथाम, मध्यस्थता और परमाणु विरोधी अभियानों पर काम करते हैं। महात्मा गांधी के वैश्विक अहिंसा और शांति के संदेश से अहिंसक विरोध, शांति सभाएं, कूटनीति, जागरूकता अभियान और शांति प्रिय राजनेताओं के समर्थन से विश्व को एक नई दिशा मिली। आज ये आंदोलन न केवल युद्ध रोकते हैं बल्कि मानव अधिकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जमीनी स्तर पर शांति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में ये आंदोलन जलवायु परिवर्तन, महामारी और सामाजिक असंतोष जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक अहिंसा और शांति के संदेशों से विश्व के देशों में विश्वास और अभय के वातावरण बने। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जिसका प्रभाव बाद में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं पर पड़ा। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष 1912 से 1994 तक एक लंबा और हिंसक अहिंसक मिश्रित आंदोलन था, जिसका नेतृत्व नेल्सन मंडेला और ANC ने किया। गौर शासकों की नस्लीय भेदभाव की नीतियों के विरुद्ध जनता ने सत्याग्रह, हड़ताल, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से 1994 में लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के विरुद्ध खूब संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें काफी वक्त जेल में व्यतीत करने पड़े। स्मरणीय है कि नेशनल पार्टी की सरकार ने आधिकारिक तौर पर काले और गोरे लोगों को अलग करने के लिए कठोर कानून बनाए थे, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को अलग करना, मिश्रित विवाह पर रोक और काले लोगों को गरीब इलाकों में रहने के लिए मजबूर करना शामिल था। अमेरिका में अधिकार आंदोलन का प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में

0: मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के विचारों से बहुत प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने गांधी जी की तकनीकों को अपनाकर नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया। यह आंदोलन मुख्य रूप से 1950 और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक संघर्ष था, जिसका उद्देश्य संस्थागत नस्लवाद, कानूनी अलगाव, भेदभाव और मताधिकार से वंचित करने जैसी कुरीतियों को समाप्त कर अश्वेत नागरिकों के लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन ने अमेरिका को बदल दिया। आंदोलन के कारण शिक्षा में कानूनी अलगाव को समाप्त करके सार्वजनिक स्कूलों का पुनर्गठन किया गया और दक्षिणी अश्वेतों को भी मताधिकार प्राप्त हुए। साम्राज्यवाद पर नैतिक प्रभाव। गांधी जी का आंदोलन अहिंसक, जन केंद्रित और नैतिक संघर्ष था। उन्होंने सत्याग्रह, सत्य की शक्ति और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर साम्राज्य की सत्ता और शोषणकारी नीतियों के खिलाफ थे। भारत में 1930 में डांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक जन आंदोलनों से अंग्रेजी साम्राज्य की नैतिकता पर गंभीर सवाल उठे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग मजबूत हुई। यहाँ तक कि ब्रिटिश जनता के मन में भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति पैदा हुई। महात्मा गांधी ने राजनीति की दिशा बदली। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ने के सार्थक कार्य किए। उनका मानना था कि धर्म के बिना राजनीति विनाशकारी होती है और धर्म के साथ राजनीति सृजनात्मक होती है। गांधी जी के विचारों के गहरे प्रभाव पश्चिमी देशों के विचारकों और दार्शनिकों पर पड़े। वे उन्हें आध्यात्मिक नायक के रूप में देखने लगे। दुनिया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों से जूझ रही थी। आपस में अविश्वास का माहौल था, भय का वातावरण बना हुआ था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने नैतिक राजनीति का माहौल पैदा कर सकारात्मक संदेश दिया। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रभाव अप्रतिम है। समूचे इतिहास में राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्य के संबंधों में इतनी शिद्दत के साथ सत्य, अहिंसा, न्याय, मनुष्य के भाईचारे जैसे बुनियादी नैतिक मूल्यों को लागू करने अथवा उन्हें मान्यता दिलाने वाला कोई और उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के माध्यम से विश्व राजनीति को एक नई राह दिखाई। न्याय और नैतिकता के आधार पर राजनीतिक सत्ता की वकालत की। सन 1947-48 तक महात्मा गांधी एक भारतीय नेता से बढ़कर एक वैश्विक नैतिक मार्गदर्शक बन चुके थे। उनके विचारों की गूंज से विश्व के अनेक राष्ट्रों में नवजागरण के स्वर स्पंदित हुए। विश्व की राजनीति में एक नवीन सार्थक आयाम निश्चित हुए और मानवता के प्रति सत्ता और राजनीति में नए दृष्टिकोण उदय हुए।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। आलेख और वाचन रामानुज सिंह सुंदरम।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा अभी आपने सुनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

de فلور غم مخور میرم و برمیگردم با تنم زاد و هم سر گردم.

راهشی راز برای تو دوره، هی کله نازنین ده بلوره،

0: Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir. For 22 minutes, the sky was lit by the commitment of India to safeguard every inch of its territory, be it land, air or water. The commitment to track and hunt down terrorists came directly from the Prime Minister.
1: यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
0: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
2: "A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
0: 100 terrorists were killed in the strike. Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashwani as well.
3: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है।
4: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post-midnight, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
5: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
6: Indian Army carries out military operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir.
0: Foreign Secretary Vikram Misri, while briefing the media about the operation, announced that India's response was focused, measured and non-escalatory in nature.
7: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
0: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
8: "हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
0: India's retaliatory response was unimaginable for the enemy. It was triggered by the deadly Pehelgam attack. On April 22nd, terror struck Pehelgam. Pakistan-backed attackers stormed a village, asked people their religion and killed them, resulting in the death of 26 people. It was a clear attempt to incite communal violence. This marked a shift from cross-border attacks to dividing India from within. In response, India launched Operation Sindoor to destroy the terror bases behind the attack. But Pakistan hit back harder. Over the next week, it used drones and shelling to target religious sites, the Shambhu Temple in Jammu, the Gurudwara in Poonch, and the Christian convents were attacked. These were not random strikes. These were part of a plan to break India's unity. To safeguard the honor of the nation, its military prowess roared. 11 major air bases were targeted.
9: मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन टीएआरए हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएआरए हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास

घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड की 100.1 MHz पर, और आप हमें सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।

दोस्तों बात करते हैं आकाशवाणी के खूबसूरत सफर की, यानी कि 90 वर्ष पूरा होने के सफर की। जून 2026 आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और दोस्तों ये एक मील का पत्थर है। आज इस उपलक्ष्य में 8 मई को एक मैराथन का आयोजन किया गया और ये मैराथन दिल्ली के आकाशवाणी के परिसर से आरंभ हुई। इसमें आकाशवाणी के वरिष्ठ अफसरों सहित कई युवाओं और स्टाफ ने भी अपना भाग लिया और हिस्सा लिया। अत्यंत उत्साह के साथ मैराथन संपन्न हुई। तो हम आपके लिए आकाशवाणी से जुड़ी कई जानकारियां रोज लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण आकाशवाणी से।

अभी आप सुन रहे थे बातों बातों फिल्म से की, जिसे गाया था लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। और दोस्तों, आज बहुत सारे दिवस हैं। पहले बात करते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस की। आज के दिन हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ताकि इस अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, रोकथाम को बढ़ावा दिया जा सके और इससे पीड़ित लोगों के लिए यानी समान देखभाल और कार्रवाई की जा सके। इस साल की थीम है अब और छिपा नहीं, अनदेखे लोगों की खोज, अनदेखे लोगों का समर्थन, शीघ्र निदान में सुधार और उपेक्षित रोगियों की सहायता पर केंद्रित है। यह अभियान प्रारंभिक जांच और निदान की कमी को दूर करता है। तो आइए सुनते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर डॉक्टर रोहित कपूर से रश्मि कुकरेती की बातचीत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, ये कार्यक्रम है घर आंगन। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। और आज है 8 मई, और आज का दिन एक विशेष दिन है। आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस। और हम आपको बता दें कि थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें कि व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों तक पहुंचती है। तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर रोहित कपूर। डॉक्टर रोहित कपूर बच्चों के रक्त संबंधी कैंसर विशेषज्ञ हैं, यानी कि पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर रोहित कपूर आपका एफएम गोल्ड के स्टूडियो में।
1: नमस्कार। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। इसमें बेसिकली बच्चे होते हैं, उनके अंदर ब्लड जो होता है वो बनता नहीं है, तो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि कम होता है बच्चों में। सो ऐसे में बच्चों को रेपिटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। सो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर रक्त ना बनने की वजह से जो बच्चे होते हैं उजले उजले लगते हैं, कमजोर होते हैं, खाना पीना में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। सो बच्चों की तीली बढ़ने लगती है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो वहां पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस करने लगती हैं। सो जो थैलेसीमिया है एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कुछ कम्युनिटीज के अंदर कॉमन है, जिनके अंदर जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो सही से उत्पन्न नहीं होता है, और बच्चे कमजोर दिखते हैं, और जनरली 6 मंथ्स की एज में डिटेक्ट होता है।
0: डॉक्टर साहब, क्या कारण होते हैं ये थैलेसीमिया जब बच्चों को हो जाता है, और अगर बच्चे को ये थैलेसीमिया है तो माँ बाप को कब पता चलता है, क्या लक्षण उनको दिखाई देते हैं बच्चों में?
1: जो थैलेसीमिया है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इंडिया की सर्टेन कम्युनिटीज है जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉमन है, जैसे कि लोहाना, सिंधीज, पंजाबीज, भानुशालीज, ये सारी कम्युनिटीज के अंदर जनरली जीन जो होता है हीमोग्लोबिन का कैरियर्स होते हैं, जिनके अंदर अगर शादी होती है सेम जेनेटिक कैरियर्स में तो ये डिसीज उत्पन्न हो सकती है, जिसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसकी जो उत्पन्न होता है वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है, जिसमें बीटा ग्लोबिन जीन या अल्फा ग्लोबिन जीन की म्यूटेशन हो सकती है। सो अब जो थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है बर्थ पे तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर इवेंचुअली जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो बहुत कमजोर सा होता है, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेता, और बहुत पेल सा लगता है बच्चा, उसका स्प्लीन बढ़ने लगता है, बहुत इरिटेबल होता है, काफी लथार्जिक हो जाता है बच्चा, और जैसे कि कहते हैं रेगुलर बच्चों की तरह उसकी ग्रोथ नहीं होती।
0: डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया मेजर की आपने बात की, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर में क्या फर्क होता है?
1: थैलेसीमिया मेजर होता है उसके अंदर जो दोनों जीन्स होते हैं जो मदर और फादर से आए हुए होते हैं वो दोनों म्यूटेटेड होते हैं, जो बीटा ग्लोबिन चेन जीन होता है, और थैलेसीमिया माइनर जिसे थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं उसमें जनरली एक जीन नॉर्मल होता है। इन लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है थोड़ा नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कम होता है, बट ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और इनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। इनके बीच में एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी होता है, बट उसके अंदर जनरली हम हाइड्रोक्सीयूरिया नाम की दवाई देते हैं, जब वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाते हैं देन वी ट्रीट देम एज थैलेसीमिया मेजर ओनली। और एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया जनरली इतनी इंपॉर्टेंट डिसीज नहीं है, और इसके अंदर हमें इन यूट्रो एक्चुअली बच्चों की डेथ हो जाती है अगर 4 जीन म्यूटेटेड हो। जनरली माइनर अल्फा थैलेसीमिया नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं,
0: यानी कि थैलेसीमिया माइनर दवाइयों से भी ठीक हो जाता है।
1: यस,
0: थैलेसीमिया मेजर में आप बता रहे हैं कि बार बार खून देने की जरूरत पड़ती है, पर उसमें भी जीन थेरेपी अगर की जाए या स्टेम सेल से अगर उसकी इलाज किया तो उसमें भी अपार संभावनाएं हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये कब तक पता लगने की संभावना होती है कि इस प्रकार के जो लक्षण समझ में आने लग जाते हैं?
1: जो इस तरह के लक्षण है अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज में पता चलने लगते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जब बच्चा जिसके साथ पैदा होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है जैसे जैसे जैसे जैसे कम होता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन आता है तो ये डिसीज दिखने लगती है, क्योंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन की चेन्स को डेवलप होने में इस कंडीशन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे इजिली पता चल सकता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं। कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी इन बच्चों को होता है डेवलप, तो इन दो कंडीशंस को हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वर्सेस थैलेसीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चल सकती है।
0: अगर आपके पास कोई माँ बाप इस प्रकार के बच्चे के साथ आते हैं जिसमें कि उन्हें लग रहा है कि ये सारे लक्षण हैं, तो आप लोगों का जो इलाज रहता है या जो सलाह रहती है क्या रहती है?
1: जो थैलेसीमिया है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका जो जनरल डेवलपमेंट होता है, जैसे माइलस्टोन होते हैं, जैसे बच्चे जब भागते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो वो थोड़ा डिले होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है बच्चे को, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसे में हम जो मदर फादर को समझाते हैं कि

0: जो बच्चा है उसे हीमोग्लोबिन जो बढ़ नहीं रहा है उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है, एवरी 28 डेज बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है जिससे उनकी ग्रोथ सही हो, क्योंकि उनको ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन डिलीवरी होगी तभी उनकी ग्रोथ होगी, तभी उनका जो इरिटेबिलिटी होगी वो कम होगी, उनकी जो लेथार्जी होगी कम होगी, जो पैलर है जो बच्चे लेथार्जी के हैं वो इम्प्रूवमेंट होगा उनके क्लिनिकल
1: डॉक्टर साहब,
0: स्टेटस
1: कोई
0: में।
1: ऐसी दवाइयां नहीं है कि जो है वो खून चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, केवल दवाइयों से ही सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता?
0: कुछ दवाइयां डेवलप हुई हैं जो कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर यूज करी गई है, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज ही हैं। सो वो दवाई दी जाती है बच्चे को और देखा जाता है कितना हीमोग्लोबिन उसका बढ़ रहा है आफ्टर यू नो सर्टेन डोजेस। अगर उसे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता तो उसकी डोज इंक्रीज करके देखते हैं कि हायर डोज पे हीमोग्लोबिन बढ़ता है या नहीं। जो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन की नीड जो होती है वो दवाई कम नहीं करती, पर ट्रांसफ्यूजन की जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ा देती है। मतलब अगर 4 हफ्ते में ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है तो वो 8 हफ्ते में मिलने लगेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लंबे समय तक सर्कुलेशन में रहेगा और मेंटेन रहेगा उस दवाई से। बट इसका जो इलाज है वो क्यूरेटिव इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बाहर जो इलाज किया जाता है वो जीन थेरेपी है, वो एक जो जीन खराब है उस जीन को इंट्रोड्यूस बच्चे की उसमें सिस्टम में कराया जाता है जिससे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगे। और ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जो हेल्दी बंदा है उसकी स्टेम सेल्स लेकर हम बच्चे के अंदर डालते हैं जिससे कि वो नया ब्लड शुरू से बनाए, इसे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। और एक और इलाज करा जा सकता है, जो लोग ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर पाते तो उन्हें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने पड़ते हैं और आयरन कम करने की दवाइयां साथ के साथ उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड होने की समस्या होती है और उससे ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
1: आप कह रहे हैं कि खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन इलाज भी आप बता रहे हैं, तो क्या इसका इलाज मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब किया जाता है कि जब तक वो थोड़ा सा ताकत तो हो शरीर में? कब तक इंतजार करना पड़ता है माँ बाप को कि हमारा बच्चा एक सामान्य जीवन बिता सके?
0: जो बच्चा है एक्चुअली बिल्कुल अपना सामान्य जीवन बिता सकता है। इसका इलाज अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से करें तो एज अर्ली पॉसिबल हो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि
1: अच्छा
0: जितना ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उतने ज्यादा एंटीबॉडीज ब्लड के अगेंस्ट बनेंगे, उतना ज्यादा आयरन ओवरलोड होगा और उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस, लिवर की कॉम्प्लिकेशंस, एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस जिसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, हाइट छोटी रहती है बच्चों की, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मुंह के फेस के चेंजेस, ये सारे चेंजेस डेवलप होने लगते हैं। उससे पहले अगर हम ट्रांसप्लांट करेंगे और स्टेम सेल्स देकर क्योर करेंगे और फुल मैच डोनर अगर हमें मिलता है तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस।
1: तो ये फुल मैच डोनर कौन हो सकता है?
0: जो फुल मैच डोनर होता है वो जनरली मैच सिबलिंग डोनर मतलब भाई या बहन होता है, और डीएनए हमें एचएलए टाइपिंग करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, मतलब हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे हम मैच करते हैं कि फुल 12x12 मैच हो, जो अगर डोनर है तो उसके सबसे बेस्ट आउटकम्स हैं। जो मदर एंड फादर हैं जनरली हाफ मैच होते हैं, मतलब जो बच्चा है 50% मदर से जीन्स आते हैं,
1: अच्छा
0: 50% फादर से जीन्स आते हैं, तो इसे कहते हैं हैप्लो आइडेंटिकल हाफ मैच। तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी करे जा सकते हैं, लीस्ट टॉक्सिसिटी में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और आउटकम्स भी अच्छे हैं, बट एज अर्ली एज 7 ईयर्स ऑफ एज के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बेस्ट आउटकम्स हैं। 7 साल के ऊपर काफी सारी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि
1: और भाई बहन हो तो सबसे अच्छा।
0: यस, अगर भाई बहन हो तो सबसे अच्छा, अदरवाइज हम जो डीएनए की जो रिपोर्ट होती है अपनी रजिस्ट्री में डालते हैं जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर उस डीएनए के जो पोटेंशियल जो मैच अनरिलेटेड डोनर हो अगर भाई बहन नहीं है तो उसको हम स्टेम सेल्स को मंगाकर हम बच्चे को दे सकें, ये भी पॉसिबल है।
1: थैलेसीमिया बीमारी ना हो ये क्या रोका जा सकता है? क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं अगर ये पहचान में आ जाए कि वंश में कभी ऐसी बीमारी हुई है, जेनेटिकली ऐसी समस्या कभी रही है या नहीं भी हो, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए डॉक्टर साहब?
0: जो थैलेसीमिया है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड इसमें जो मेनली जो थैलेसीमिया ट्रेट होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन A2 की कंसंट्रेशन जो होती है 3.5 से ऊपर होती है और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो इजिली डिटेक्ट हो सकता है कि ये बंदा थैलेसीमिक ट्रेट है। तो ये एक बेसिक HPLC टेस्ट से भी हो सकती है, पर अगर किसी की फैमिली में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है तो हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए देखने के लिए किसी तरीके का थैलेसीमिया सिंड्रोम तो नहीं है जिससे कि बच्चों के अंदर जो थैलेसीमिया है वो डेवलप ना हो। और क्लोज निट मैरिजेस जैसे कि कॉन्सैंगनस मैरिजेस होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि दो जीन जिनके अंदर म्यूटेशन है वो क्लस्टर हो सकते हैं, थैलेसीमिया मेजर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है ऐसे केसेस में। सो जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग, कॉन्सैंगनस मैरिज, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि यूज करे जा सकते हैं देखने के लिए कि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ थैलेसीमिया ना हो। और अब नई चीजें उत्पन्न हुई हैं जैसे कि एमनियोसिंथेसिस, क्रोनिक विलर सैम्पलिंग, अगर लगता है कि बच्चे को थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं तो जो एमनियोसिंथेसिस एक जांच करी जा सकती है जब बच्चा बॉर्न भी नहीं हो, और चेक करा सकते हैं कि उसे थैलेसीमिया सिंड्रोम है या नहीं, एंड अगर नहीं होता तो प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड, अदरवाइज यू नो समटाइम्स इफ इट इज थैलेसीमिया मेजर बिकॉज द चाइल्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोलॉन्ग लाइफ चाहिए होंगे उसे, प्री मैरिटल काउंसलिंग बड़ी नेसेसरी होती है चेक करने के लिए कि थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है मदर और फादर, जो कि थैलेसीमिया मेजर सिंड्रोम को दे कैन गिव राइज टू द चाइल्ड।
1: यानी कि इस प्रकार

0: की काउंसलिंग की जरूरत है, अगर काउंसलिंग हो जाए तो ये बीमारी से बचा जा सकता है।
1: प्रिवेंटिव है।
0: डॉक्टर साहब, क्या संदेश देंगे ऐसे परिवारों को जिसमें इस प्रकार का जो थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है?
1: जो थैलेसीमिया से ग्रसित फैमिलीज हैं और जिनके बच्चे थैलेसीमिक्स हैं, उनको सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी के लिए उनके पास फंड्स नहीं है तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो दवाइयाँ होती है जिससे आयरन कम होता है वो वाली दवाइयाँ रेगुलरली लें। अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें। कैल्शियम रिच डाइट लेनी पड़ती है, वाइटामिन डी रिच डाइट लेनी पड़ती है, आयरन रिच प्रोडक्ट्स को कम करना पड़ता है क्योंकि ब्लड से ही आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो वाइटामिन सी जो होता है उससे आयरन कम होता है बॉडी में, तो ये सारी चीजें लेनी चाहिए और उनको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। साथ के साथ रेगुलर जांचें करानी चाहिए, जैसे कि रेगुलर हाइट वेट मेजरमेंट, 7 साल के बाद एको कराना पड़ता है कि हार्ट का कंडीशन बिल्कुल ठीक है, लिवर का एमआरआई आयरन ओवरलोड देखने के लिए, कार्डिक एमआरआई देखने के लिए कि T2 स्टार MRI देखने के लिए कि हार्ट में ओवरलोड तो नहीं हो रहा आयरन का, 10 साल की उम्र के बाद एंडोक्राइन वर्कअप कराना पड़ेगा क्योंकि वहीं से हाइट और वेट और एंडोक्राइन डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर भी आयरन डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे हाइट वेट थायराइड पैराथायराइड नाम के जो हॉर्मोन होते हैं उनकी टेस्टिंग करनी पड़ती, बोन मिनरल डेंसिटी की टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो रेगुलरली हर ईयरली कराएं, वायरल मार्कर्स हर ईयरली चेक करना होता है, हाइट और वेट रिलेटेड की रेगुलर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही वो रेगुलर चेक करना पड़ता है, 16 ईयर्स की एज पे पैराथायराइड हॉर्मोन की टेस्टिंग करनी पड़ती है और साथ के साथ ग्रोथ चार्ट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और ये भी चेक करना पड़ता है कि रेगुलरली T2 स्टार MRI हो रहा है या नहीं हो रहा, जिससे कि
0: यानी कि
1: आयरन ओवरलोड।
0: लगातार डॉक्टर के अपने परामर्श लेते रहें, वो जैसा जैसा कहें उस प्रकार की जांचें करें, उस प्रकार का भोजन लें। तो डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि एक क्या सामान्य जीवन थैलेसीमिया से जो पीड़ित हैं वो बिता सकते हैं?
1: बिल्कुल, जो थैलेसीमिक बच्चे हैं वो बिल्कुल सामान्य जीवन बिता सकते हैं, उन्हें अपनी दवाइयों के साथ बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा, उनको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, उनको एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आयरन कंटेनिंग फूड्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, मच विटामिन डी, कैल्शियम, जिससे कि बोन उनकी ठीक रहे क्योंकि फेशियल डिफॉर्मिटीज इसके अंदर कॉमन होती हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलर एंडोक्राइन वर्कअप, एंडोक्राइन टेस्टिंग, हाइट वेट जो डेवलपमेंट होता है जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट होता है उनको मद्देनजर रखकर देखना पड़ेगा कि उनका आयरन चिलेशन अगर जितना बेटर होगा, जितना कंप्लायंट होगा मेडिसिन का, उतनी आयरन ओवरलोडिंग कम होगी और उतना हेल्दी लाइफस्टाइल वो कर पाएंगे। अभी भी भारत के अंदर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक अपकमिंग फील्ड है और आउटकम्स तो इसके अच्छे हैं, बट स्टिल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक स्ट्रेटेजी है टू मेंटेन एडिक्वेट ग्रोथ, दिस इज व्हाट वी वांट, कि जिससे ऑक्सीजन रेगुलरली पेशेंट को मिलते रहे, उनकी ग्रोथ ठीक रहे।
0: बहुत बढ़िया। डॉक्टर रोहित कपूर, आप हमारे स्टूडियो में आए, गोल्ड के स्टूडियो में, और विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी 8 मई का जो ये दिवस है इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे गोल्ड में बुलाया गया और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हमने चर्चा करी है और बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी।
2: जीवन से भरी तेरी आँखें,

और दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज हमारा खास विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और अब बात करते हैं कुछ विश्व रेड क्रॉस दिवस की। विश्व रेड क्रॉस का जो संघर्ष हो आपदाओं और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों और कर्मचारियों को सम्मानित करने पर केंद्रित है। आज के दिन मनाए जाने वाला ये दिवस करुणा, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा की रक्षा पर बल देता है। इस साल की थीम है मानवता को जीवित रखना है। जी सुनिए, बसेरा फिल्म से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं कुछ आज के दिवस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित ये अभियान सरकारों और गैर सरकारी संगठनों निगमों के साथ आता है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें कम किया जा सके। इस बार की थीम है एक सुरक्षा बयान दे, सुरक्षित पैदल चलने, साइकिल चलाने, जीवन के लिए सड़कें और गति धीमी करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हर दिन हमारे पास किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जाने के कारण होते हैं, चाहे हम काम, स्कूल या मनोरंजन के लिए घर से निकलें। हालांकि सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वहां पहुंचना। गति धीमी करके हम अपने बच्चों, परिवार और दोस्तों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाते हैं। जब दुनिया इस अभियान को अपनाएगी तो सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और हम बहुत से लोगों की जिंदगी को बचा पाएंगे। ये खुददार फिल्म से की थी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। बुजुर्गों के संस्कार जीवन का आधार, बड़ों के संस्कार यानी बुजुर्गों से मिले संस्कार ही जीवन का आधार होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन से हमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान मिलता है, जो एक सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है। बुजुर्गों की सीख हमें एकता और सम्मान के महत्व को भी सिखाती है और बुजुर्गों से हमें संस्कार, अच्छे आचरण, नैतिक मूल्यों और जीवन जीने की कला का ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान हमें सही और गलत के बीच अंतर करने और अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। बुजुर्गों के पास हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें अपनी विरासत से अवगत कराते हैं। बुजुर्गों के जीवन का भरपूर अनुभव होता है। वे अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। वो एक दूसरे के साथ प्यार सहयोग से रहने का महत्व समझाते हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनकी दुआएं हमें सफलता और सुख प्रदान करती हैं। सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है अग्नि परीक्षा।

और दोस्तों बात करते हैं सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन। भारत में बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है और इस वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जा रही है। और इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बुजुर्गों को मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले न्यूनतम आयु वाले वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा के पात्र होंगे। पेंशन राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की देरी या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती। ये पेंशन उनके दैनिक खर्चों जैसे भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी।

रंग सत्य गति सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

और दोस्तों, बुजुर्ग मजबूत नींव होते हैं परिवार के। जन ही तो लिखा है हर दीवार पे घर की। और वो नहीं मांगते कोई भी अनमोल उपहार, जन्नत मिल जाती है अगर मिल जाए थोड़ा सा प्यार। बुजुर्ग हर घर की परंपरा के हैं आधार, और शान में ही रहता है परिवार, करें सदा इनका सम्मान। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है, उन्होंने ही तो सिखाया प्यार और रिश्तों को हमेशा अपनाना है। और दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

और हमारी खड़ी दोस्तों धीरे धीरे नहीं चल रहे हैं। अब हम यही कहना चाहते हैं कि हम यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए आप रहें।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया।

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिलहाल तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें रोमांस भी है, रोमांच भी है, और संगीत को इस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है कि आज भी इसका हर गीत, हर दृश्य दिल में ताजगी भर देता है। अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में थी। तो पुरानी यादों की उस सड़क पर फिर से हम निकल पड़ते हैं जहाँ मुस्कुराहटें हैं, शरारतें हैं, और साथ है SD बर्मन के अमर संगीत का जादू। फिल्म है 1957 की 9/2/11। देवानंद द्वारा निर्मित ये फिल्म एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी, और इसे रोड मूवी की श्रेणी में भी रखा गया था। ये उनके भाई विजय आनंद की पहली निर्देशित फिल्म थी। 1934 की अमेरिकी फिल्म इट हैपेंड वन नाइट इससे आंशिक रूप से ये फिल्म प्रेरित थी, और इस फिल्म में नजर आए थे देवानंद, कल्पना कार्तिक, मदनपुरी, शशिकला और जीवन। फिल्म का संगीत जो आप सुन रहे हैं SD बर्मन साहब ने दिया था, और गीत मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे।

9-2-11 1957 में रिलीज हुई एक शानदार रोमांटिक एडवेंचर फिल्म है जिसे हमने आपको बताया निर्देशित किया था विजय आनंद ने। मुख्य भूमिका में देवानंद थे जो कि मदन के किरदार में नजर आए थे। कल्पना कार्तिक ने राखी और एक और किरदार इन्होंने निभाया था। इसके अलावा जीवन सुरजीत के किरदार में नजर आए थे। मदनपुरी राधेश्याम राधे के किरदार में थे। शशिकला नीता के किरदार में थी। कृष्ण धवन कुलदीप बने थे। ललिता पवार कुलदीप की माँ बनी थी। इसके अलावा जगदीश राज हेलेन जिन्होंने बहुत सुंदर डांस किया था। टुनटुन जो एक मकान मालकिन के किरदार में थी। ये सब इस फिल्म में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी थे। 9-2-11 1957 में बनी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म थी और उनके छोटे भाई यानी कि देवानंद की छोटे भाई उन्होंने विजय आनंद ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। और आप जानते ही होंगे कि जो कल्पना कार्तिक हैं वो देवानंद साहब की पत्नी भी थी। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। हम है राही प्यार के आंखों में क्या जी जो आप सुनी रहे हैं और हम है राही प्यार के बस अब कुछ देर में ही मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार आशा भोसले रफ़ी साहब ने। और गीतों में सबसे ख़ास बात पता है क्या थी, उसमें सफ़र की मस्ती और आज़ादी की खुशबू दोनों नजर आती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं हम आपको बताएंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म से किशोर दा की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत।

फिल्म 9-2-11 इससे जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। 9-2-11 फिल्म की शूटिंग जब कर रहे थे तो इस फिल्म में उनके साथ जो देवानंद साहब थे उनके साथ कल्पना कार्तिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी और आगे चलकर वो देवानंद साहब की पत्नी भी बनी थी। फिल्म का डायरेक्शन देव साहब के भाई विजय आनंद कर रहे थे और देव साहब खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म 9-2-11 की शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी और एक बार फिल्म की पूरी यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूटिंग कर रही थी। शिवपुरी इलाका शायद आपने सुना होगा, वैसे आपको बता दूं कि मेरा होम टाउन वही है, तो रात को उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। ये वो दौर था जब डाकुओं का बहुत शोर था, पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में रुकी थी। तभी एक रात देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब ने अंदर से पूछा, कौन है? तो आवाज आई, हम है बगर सिंह। ये सुनते ही देव साहब के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला बंदूक लिए एक आदमी खड़ा है। इससे पहले देवानंद साहब कुछ कह पाते, बगर सिंह ने देव साहब की एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए कहा कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये सुनकर देव साहब की जान में जान आई और उन्होंने अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ करके उन्हें बगर सिंह को दे दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते बागी बगर सिंह ने देव साहब से कहा कि देव साहब अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना, और इतना कहकर वो वहां से चले गए। तो ये वो किस्सा था, शायद देवान साहब इस किस्से को कभी भी नहीं भूले होंगे। 9-2-11 फिल्म थे वो विजय आनंद की पहली हिंदी फिल्म थी और इसमें उन्होंने अपने भाई और बाद में जो हीरोइन थी, बाद में उनकी जो भाभी बनी, उनको लिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक हॉलीवुड फिल्म इट हैपन वन नाइट से काफ़ी इम्प्रेस थी और देवानंद अगर इस फिल्म में नहीं होते तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि वो उन्होंने इस फिल्म की जो पटकथा थी उसकी बारीकियों पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था, हर चीज़ को उन्होंने अपने हिसाब से, जब तक कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उन्होंने उसमें सुधार करते रहे, और उसके बाद जब ये फिल्म बनी तो लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया।

कुछ दुनिया सोती हो और तारों भरे खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो, क्या हो फिर जो दुनिया सोती हो और तारों भरे खामोशी।

आशा जी और गीता दत्त की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत फिल्म 9/2/11 कहानी है मदन नाम के एक बेफिक्र नौजवान की जो अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीता है। उसे एक कार को दिल्ली से मुंबई ले जाने का काम मिलता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की जो लड़के के भेष में उनके साथ सफर करती है। रास्ते में दोनों के बीच नोकझोंक मस्ती और धीरे धीरे प्यार पनपता है, लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सच्चाई सामने आती है, पहचान धोखा और प्यार का असली इम्तिहान इस फिल्म में दिखाया गया है। असली रोड ट्रिप ये फिल्म जो एहसास दिलाती है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग जो थी वो असली लोकेशन पर ही हुई थी और पूरी फिल्म एक रोड पर ही नेचुरल तरीके से फिल्माई गई थी, इसीलिए इसको रोड मूवी भी कहा जाता है। देवानंद का जो कैजुअल और चार्मिंग अंदाज था इस फिल्म में लोगों ने इतना पसंद किया कि वो युवाओं के आइकन बन गए थे। विजय आनंद की ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी, लेकिन उन्होंने अपने कैमरे का जो एंगल था और कहानी कहने का जो अंदाज था उससे अपनी एक अलग पहचान बना ली। कल्पना कार्तिक एक लड़के के भेष में इतनी खूबसूरत लगी थी और जब वो सफ़र करती हैं उस दौर में ये वेशभूषा और एक लड़के के अंदाज में उनको एक हीरोइन को दिखाना काफ़ी दिलचस्प भी था और एक नया कॉन्सेप्ट भी था। ढेर सारे संदेश भी पहुंच रहे हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को मैं शामिल करूंगी।

हमारे साथ अजीत भापसर, प्रमीला भापसर और सनी जी जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से। अगला संदेश हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम इंदिरा और सार्थक शर्मा का आया हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, नूर, गुलराल, अभिराज जी हमारे साथ हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन जी हमारे साथ हैं। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरब, ज्योति रानी, गुरमत कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार, दुर्गा जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुरेश जाघव, अनीता, सोनल जी का नेहरू चौक पैठन से आया हुआ है। देवशंकर तामोरी, अजय देव, मास्टर अल कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदीप द्विवेदी जी देवरिया यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और राजकुमार डूंडी जी, प्रमोद कुमार डूंडी जी गांव फरासी जिला हिसार से जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, मास्टर अल कवि, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालो से हैं। अगला संदेश जो हमारे पास पहुँचा है ये पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, फालसिका पंजाब से भूषण खेड़ा जी और उनके परिवार वालों का आया हुआ है। नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल और परिवार के सभी सदस्य हैं। सुदर्शन मुखी जी ने बड़े बहुत ही सुंदर स्टाइल से हमें लिखा है इस फिल्म का नाम 9/2 और 11। और अगला जो संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा का है। चंडीगढ़ से अनीता अनेजा, बिमल अनेजा जी हमारे साथ हैं। जी वी राणा नेहरू बयार दिल्ली से हैं। राजकोट से परवीन बाबू, रेशमा, सकीला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जगह, अच्छा ये अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी हैं। बटिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली जी हैं। और अगला संदेश या संबलपुर काकिर से फागुन राम, ज्योति ओचस्वी जी का है। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र, सुधार, मनोज, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन शु, ऊषा टिल्लू नायक। कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हैं। ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित कुमार, कोचवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का आया हुआ है जो जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, परदीन और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुकेश कासलेकर जी तहसील बरुण, अमरावती, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता जी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं हमारे साथ। और पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बन्ने ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली जी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी का एक और संदेश है। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित जी, रघुनाथपुर, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा, पूजा परिहार जी हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ इस सफ़र में, हमारे हम सफ़र बनने के लिए। दो संदेश और हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिर डार उर्फी जान यूसरा जी हमारे साथ हैं। एक और संदेश से है ये गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर से साइना हसन और सैयद मसरून जी।

तो दोस्तों 9-2-11 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सफर है, मस्ती है, प्यार है और जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती हुई फिल्म है। ये पुराने सिनेमा का जादू है जब टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन असलीपन भरपूर था। उम्मीद करते हैं कि आज की ये फिल्म

आपको जरूर पसंद आई होगी। हमेशा की तरह यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और जरूर देखिए। फिलहाल मैं अब आपसे अनुमति लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई फिल्म के साथ। तो अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: पटेल के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नजरिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह की मैराथन और वॉकाथन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़दा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में अवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के तिजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद यह फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निज़ाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में शानदार 111 रन बनाए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। DRDO और भारतीय फजाइया ने मुल्क ही में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाब अलामत करार दिया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
4: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:17 हो रहे हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी लिसनर्स का एक ही कलाकार कार्यक्रम का। सफर मनीषा के साथ तय होगा आज आपका, तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, एक ही कलाकार में आज बात उस अभिनेत्री की जिसने नायिकाओं को सिर्फ ग्लैमर नहीं, गरिमा, संवेदनशीलता और सशक्त नारी का पक्ष दिखलाया। 80 से 90 के दशक में जिसने मराठी सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्मों में अपनी खूबसूरती और सहज अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें उनके चाहने वालों ने सादगी और प्रतिभा का सुंदर संगम माना, मराठी थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक और फिर अमेरिका में नई जिंदगी का सफर, लेकिन कला से रिश्ता उनका कभी नहीं टूटा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर उनके अभिनय से सजे इस गीत के साथ।

है ना फिल्म में, ये जो अंदाज था अश्विनी भावे का इस गीत में, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गीत सुना, और जो चाहने वाले फिल्म जगत के हैं वो अश्विनी भावे के अभिनय को कभी भुला नहीं सकते हैं। 7 मई को मुंबई में जन्मी अश्विनी भावे ने अभिनय की शुरुआत स्कूल के दिनों में थिएटर से की। कहा जाता है कि मंच पर उनकी पकड़ इतनी स्वाभाविक थी दोस्तों कि कम उम्र में ही उन्होंने लोगों का ध्यान अपने अभिनय की तरफ खींच लिया था। इस तरह उन्होंने मराठी रंगमंच और फिल्मों से अपने करियर की मजबूत नींव रखी। स्कूलिंग के साथ साथ थिएटर गगन भेदी से शुरुआत और फिर मराठी डेब्यू शाबाश सुनबाई जो 1986 में हुआ, फिर जल्द ही आशी ही बनवा बनवी 1988 में जो उनका रंगमंच रहा, और कलाट नकलट जो 1989 में जैसे अभिनय के मंचों के साथ फिर वो फिल्मों में और फिर मराठी सिनेमा के शीर्ष पर पहुंचने वाली अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार किया। आरके फिल्म्स की हिना जो 1991 में आई, राज कपूर के सपनों की इस फिल्म में जिसे राज कपूर के निधन के बाद रणधीर कपूर ने पूरा किया, और इस बड़े प्रोजेक्ट में अश्विनी ने चांदनी का किरदार निभाकर राष्ट्रीय पहचान हासिल की। लेकिन दोस्तों, सीमाओं से परे प्रेम की कहानी और अश्विनी का सधा हुआ अभिनय भले ही फिल्म के मुख्य भूमिका में यानी कि नायिका जेबा बख्तियार के लिए उसके समतुल्य नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो अभिनय किया उसमें अश्विनी की उपस्थिति इतनी प्रभावी रही कि हिंदी दर्शकों ने उसे खूब सराहा और आज भी उनके उस अभिनय को नहीं भूल सकते हैं। फिलहाल हम सुनते हैं उन पे फिल्माई गई एक अगली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और इसे सुनते ही आप भी अश्विनी जी के उस सधे हुए अभिनय के दर्शन करने लगेंगे। आप वहां खो जाएंगे जहां वो एक सजीव चित्रण में अपना अभिनय परोसती थीं।

जी हाँ दोस्तों, आप इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार से। और आज हम जो गीत आपको सुना रहे हैं 90s के क्लासिक प्लेलिस्ट में शामिल वो हिस्सा वो गीत हैं जिसमें अभिनेत्री अश्विनी भावे की लोकप्रियता ने शिखर को छुआ है। और अश्विनी भावे की बात करें तो उन्होंने इस तरह कई फिल्मों में काम किया, जैसे मीरा का मोहन, सैनिक, परंपरा, बंधन जैसी कई फिल्मों में।

अपनी छाप बनाई। सैनिक में अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया। उनका अभिनय अक्सर ग्लैमर से ज्यादा भावनात्मक गहराई के लिए सराहा गया। और दिलचस्प बात यह भी रही कि उन्होंने कई बार ऐसे किरदार चुने जिनमें भारतीय नारी की मजबूती और संवेदनशीलता साफ नजर आती थी। तो चलिए सुनते हैं उनके अभिनय से सजा एक और खूबसूरत सा गीत जो आपको लेकर चलेगा उसी खूबसूरत दुनिया में जब उनके खूबसूरत अभिनय के जलवे बिखरे होते थे।

हालांकि अश्विनी भावे, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, भारतीय फिल्म की वो अदाकारा जिन्होंने 80 और 90 के दशक में फिल्मी जगत में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने विवाह के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी दोस्तों, और अमेरिका जाकर मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। यानी उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं, सिनेमा की तकनीकी बारीकियां भी सीखी। बतौर अभिनेत्री उनका ये कदम उस दौर में काफी अलग था, जब कई अभिनेत्रियां शादी के बाद पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाया करती थीं। ऐसे समय में अश्विनी भावे ने खुद को नए रूप में विकसित किया। विवाह के बाद 2008 में उन्होंने कदाचित से फिर दमदार वापसी की, और सबसे खास बात कि इस फिल्म की वो निर्माता भी रहीं। एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा उम्र या दौर की मोहताज नहीं होती। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड भी दिया गया। और अश्विनी भावे अपने जीवन में सिर्फ अभिनेत्री के रूप में नहीं रहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया।

फेवरेट अभिनेत्री भी हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े, अंबेडकर चौकी वाकोडी से, और उनके साथ उत्तम जमदाडे और स्वराज जमदाडे हैं। हमारे इन श्रोता साथी का भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले और जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है उनमें हमारे साथी हैं चिरमिरी कुरासिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, बहुत स्वागत आपका। उसी तरह छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसी तरह अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से, और हमारे साथ हैं बुलंदशहर ऊपरकोट मोहल्ला से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बास और अबान अब्बासी और उनका पूरा अब्बासी परिवार। उसी तरह हमारे साथ हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रधान खुराना जी। बहुत स्वागत है आपका। हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, सुदर्शन मुखी हमारे साथ हैं, उनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांति नगर सोनीपत से, कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है। संदीप मकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हमारे श्रोता साथी जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे हौसले को और बढ़ाते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अश्विनी भावे की दोस्तों, क्योंकि अश्विनी भावे की जीवन यात्रा हमें सिखलाती है कि सफलता सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि निरंतर रहना है। भाषा कोई सीमा नहीं, प्रतिभा हर मंच में चमक सकती है और परिवार और करियर दोनों को संतुलित बनाया जा सकता है। ये हमें अश्विनी भावे ने अपनी जिंदगी में और अपने काम से हमें सिखलाया है। मराठी और हिंदी दोनों क्षेत्रों में उन्होंने परिवार, आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता जैसे विषयों को सिनेमा के भीतर जगह दी। बाद के वर्षों में डॉक्यूमेंट्री और सामाजिक विषयों से जुड़ाव कला को उद्देश्य के साथ जोड़ने की वो मिसाल बनती रहीं। उनकी यात्रा खासकर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन के अलग अलग चरणों में खुद को फिर से परिभाषित करना चाहती हैं। तो चलिए चलते चलते ये अंतिम गीत इस कार्यक्रम का हम सुनते हैं अश्विनी भावे का। ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, सुनिए।

तो दोस्तों ये थी आज के एक ही कलाकार में अश्विनी भावे की जीवन यात्रा की कहानी। अब आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। शब

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
0: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।

0: तो बिमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में।

0: तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,

0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
1: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से।

इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए पेश है समाचार, पहले हिंदी में

Bihar Bang 具有悠久的灿烂历史背景。古印度时佛教创造人释鸠牟尼也是来到这里，在恒河后边大力

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और मेरे साथ हैं
2: अभिनव कुमार झा। नमस्कार साथियों।
1: और सबसे पहले ये बता देते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। रोज की तरह आईपीएल पर तो चर्चा होगी ही, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रोमांच और भी बढ़ता जा रहा है। हर टीम को जीत की दरकार है और कल खेले गए मुकाबले के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ आज शाम होने वाले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मुकाबले पर पूर्वावलोकन भी हम आज जरूर आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप जो ताशकंत में खेली जा रही है उस पर खास रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 शंघाई में खेला जा रहा है और उस पर जुड़ी भी खास आपको रिपोर्ट और वहां का ताजा हाल भी आपको बताएंगे। एएफसी अंडर 17 एशियन कप विमेन इंडिया वर्सेस लेबनान पर खास रिपोर्ट आपको सुनवाई जाएगी और साथ ही साथ एक खास रिपोर्ट जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है

एक बहुत ही छोटे गांव पर आधारित वो उससे जुड़ी भी भेंट वार्ताएं और चर्चा आपको सुनवाएंगे। ट्रैप इवेंट ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन अलमाटी कजाकिस्तान में जो खेला जा रहा है उसके जो 75 टारगेट्स के बाद जो रैंकिंग है उसके बारे में आपको बताएंगे। स्क्वैश की बात करेंगे, PSA वर्ल्ड चैंपियनशिप और इसके अलावा चेस और DPL भी जरूर होंगे।

0: आईपीएल का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल से पता चलता है अब शुरू हो रहा है आईपीएल की ताजा जानकारी। कल खेले गए मुकाबले की सबसे पहले बात करते हैं। जो मुकाबला 50वां मुकाबला था आईपीएल 2026 का और ये लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में था। इस 50वें मुकाबला ये इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और बारिश से प्रभावित मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे एलएसजी की शुरुआत दमदार रही। मिचेल मार्श और अर्शन कुलकर्णी की सलामी जोड़ी ने मिलकर पहले विकेट के लिए 56 गेंदों में 95 रन जोड़े और अर्शन एक छोर संभाल कर खड़े रहे तो दूसरे छोर से मार्श ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मैच के 9वें ओवर में तेज बारिश शुरू होने के कारण मुकाबले को रोकना पड़ा। मैच दोबारा शुरू हुआ तो अर्शन 24 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शन के बाद मार्श को निकोलस पूरन के रूप में एक और बढ़िया जोड़ीदार मिला और मार्श ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। 14वें ओवर का अंत होते ही फिर से बारिश ने मैच में खलल डाला और मुकाबले को रोकना पड़ा। बारिश के कारण समय बर्बाद हुआ और इसकी वजह से ओवरों में कटौती की गई और मुकाबले को 19-19 ओवर का कर दिया गया। बारिश की वजह से दूसरी बार ब्रेक के बाद मार्श 56 गेंदों में 111 रन बनाकर जॉश हेजलवुड का शिकार बने। अपनी शतकीय पारी में मार्श ने 9 छक्के लगाए और पूरन ने 23 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाए। वहीं अंत के ओवरों में कप्तान ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 गेंदों में 32 रनों की नाबाद पारी खेली जबकि एडन मार्करम 1 रन बनाकर नाबाद रहे और गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड और कृणाल पांड्या ने एक एक विकेट अपने नाम किया। और वहीं खास प्रदर्शन रहा लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर प्रिंस यादव का जिन्होंने जब आरसीबी बैटिंग करने आई तो उनकी पहली 3 विकेटें अपने नाम करी जैकब बैथल कोहली और पाडिकल की। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं प्रिंस यादव।
1: सर, ड्रेसिंग रूम का माहौल पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा ही है। क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है बिल्कुल, बट ये है कि हमारी टीम एफर्ट्स कर रही है पूरा अपना और प्लेऑफ्स के बारे में ज़्यादा ना सोच के हम पर मैच बाय मैच सोच रहे हैं सर, अच्छा करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। भैया, विकेट के बाद मेरे को अच्छा लगा बट सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ये है कि हम जीते मैच। अगर मैं विकेट लेता और हम हार जाते तो इतना वो नहीं होता, बट ये है कि सबसे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरी टीम जीती।
2: या अलग अलग तरीका हो या एक तरीका हो, बॉलर जब विकेट लेता है तो ये है कि अच्छा तो फील होता है, बट मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे आउट करके ही हम मैच जीत सकते थे तो वही हुआ और तो अच्छा फील हो रहा है भैया बिल्कुल। सर के साथ लगातार बातें होती रहती है, इनफैक्ट मोहम्मद शमी भैया भी है वहाँ पे, कैसे क्या डिलीवर करना है सिर्फ यही बातें हो रही है सर।
1: भैया से नए बॉल के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बट सबसे अच्छी बात उनकी मेरे को ये लगती है कि जब भी कोई बॉलर बॉल डाल रहा होता है तो मिड ऑन या मिड ऑफ खड़े होते हैं, तो उससे ये होता है कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपके साथ खड़ा है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है।
0: लखनऊ सुपर जायंट्स लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खराब रही थी और पारी के पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने बैथल को पवेलियन भेजा। बैथल ने 4 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद दूसरे ओवर में प्रिंस यादव ने विराट कोहली के रूप में आरसीबी को बड़ा झटका दिया और कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद रजत पाटीदार देवदत्त पाडिकल के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रनों की शानदार साझेदारी हुई और इस दौरान पाटीदार ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, लेकिन फिर प्रिंस यादव ने एक ही ओवर में आरसीबी को 2 झटके दिए। 11वें ओवर की पहली गेंद और प्रिंस ने देवदत्त पाडिकल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाडिकल 25 गेंद और 34 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद 5वीं गेंद पर

0: रितेश शर्मा को 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। और क्या कहते हैं रजत पाटीदार अपने प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन को लेकर, आइए सुनते हैं।
1: मिचेल मार्श ने मतलब काफ़ी अच्छी बैटिंग करी इस विकेट पे और विकेट भी अच्छा था, बैटिंग ट्रैक था और उसके साथ जिस तरह से उसने पावर प्ले में स्टार्ट किया, हम पे प्रेशर आया था एक तरीके से। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि जिस तरह हमने, हमारे बॉलर्स ने उसको कंट्रोल किया, फिर बीच में ब्रेक भी हुआ, बारिश भी हुआ, तो आई थिंक हमको टाइम भी मिला सोचने का। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था और जिस तरह हमने फिनिश किया था, आई थिंक मुझे लगता है मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक द वे वी बोल्ड, द वे वी कंट्रोल द गेम, जैसा कि अब गेम में मुझे ऐसा लगा 2 शॉट पीछे थे बस 9 रन से, आई थिंक मैच को हमने लूज किया है। और देव, आई थिंक देव बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है देव, आई थिंक वो लग भी रहा है मुझे। हम जिस तरह नेट्स में एक दूसरे के साथ हम बैटिंग करते हैं पेयर्स में, तो उसको देख के काफ़ी सीख भी रहा हूँ उससे, आई थिंक तो अच्छा फ्रेम ऑफ माइंड में देव।
0: और अब बात कर लेते हैं आज शाम होने वाले मुकाबले की। 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज शाम अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के लिए यह मैच करो या मरो का होने वाला है और इस मैच में हार दिल्ली के लिए प्लेऑफ के रास्ते बंद कर देगी। वहीं केकेआर भी जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी। दोनों टीमों के बीच सीजन का पहला मुकाबला है और दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत लगातार 2 जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट आई और पिछले 8 मैचों में डीसी 6 मैच हार चुकी है और कुल 10 मैचों में 4 जीत के साथ डीसी अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। एक और हार डीसी के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद कर सकती है। वहीं केकेआर के लिए सीजन की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही थी। टीम ने लगातार 5 मैच गंवाए थे और एक बारिश की वजह से स्थगित हो गया था। टीम बेहद असंतुलित और कमजोर भी नजर आ रही थी, लेकिन टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने पिछले 3 मैच जीते हैं और डीसी के खिलाफ भी जीत का चौका लगाने के लिए केकेआर कमर कसकर आया है। दोनों टीमों के अगर मैचेस की बात करें तो कुल 35 मैच खेले गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स 15 जबकि केकेआर 19 मैचों में विजयी रहा है और 1 मैच का परिणाम नहीं आया है।

चाइना के शंघाई में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 से भारत के लिए बड़ी खबर ये है कि वुमेन रिकर्व में भारतीय तीरंदाज सिमरनजीत कौर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं दूसरी ओर कंपाउंड मैन में भी साहिल राजेश यादव सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और हमारी रिकर्व वुमेन टीम तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां वो 10 मई को चाइना के खिलाफ फाइनल खेलेगी। रिकर्व स्पर्धा की बात करें तो महिला एकल में आज तड़के तीसरे राउंड के मुकाबले खेले गए, जहां सिमरनजीत कौर ने चाइना की यू को 6-4 से हराया। चौथे राउंड में उनका सामना तुर्की की ओजकान से हुआ, जिनको सिमरन ने एक दिलचस्प मुकाबले में 6-5 से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उनके सामने थी चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी फोंग यू झू, जिन पर उन्होंने एक तरफा मुकाबले में 6-0 से जीत दर्ज की और रिकर्व महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहां उनका मुकाबला विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की कॉन्ग चे यंग से होगा, जो कि 10 मई को खेला जाएगा। देखा जाए तो सिमरनजीत कौर पदक से केवल एक कदम दूर है और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सेमीफाइनल की इस कड़ी चुनौती को पार करने के लिए वो किस माइंडसेट से उतरती हैं। वहीं दूसरी ओर दीपिका कुमारी ने भी रिकर्व महिला एकल में अपने तीसरे राउंड का मुकाबला वियतनाम की खिलाड़ी से 6-0 से जीता, लेकिन चौथे राउंड में उन्हें साउथ कोरिया की कैंग चे यंग के हाथों 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे राउंड में ही भारत की तीसरी खिलाड़ी कुमकुम अनिल मोहोद को भी मंगोलिया के खिलाड़ी पर 7-1 से जीत मिली, पर वो भी अपने जीत के सिलसिले को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाई और चौथे राउंड में मेक्सिको की अलेक्जेंडर वेलेंसिया के हाथों 7-3 से हार गई। वहीं तीसरे राउंड में ही भारत की अंकिता भगत को चाइनीज ताइपे की फोंग यू झू ने 6-5 से हराया। अब बात करते हैं रिकर्व पुरुष एकल की, उसमें भी आज तीसरे राउंड से आगे के मैचेस खेले गए श्रोताओं, जहां तरुणदीप राय को 6-4 से साउथ कोरिया के मिंगी सियो से हार का सामना करना पड़ा। वहीं धीरज बोमदेवरा ने अपने यूएसए प्रतिनिधि जैक विलियम्स को 6-0 से शिकस्त दी और चौथे राउंड में फ्रांस के जीन चार्ल्स ने उन्हें 6-0 से हरा दिया, जिसके साथ ही रिकर्व मैन में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। अब अगर बात करें आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के कंपाउंड मैचेस की, तो पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत के साहिल राजेश यादव ने ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी निको विनर को 147 के बराबर अंक के बाद शूट ऑफ में 9 के

0: अगले 10 पॉइंट से मात दी। अब उनका सेमीफाइनल मुकाबला कल फ्रांस के वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी निकोलस गिरार्ड से होगा। पुरुष एकल के एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कुशल दलाल को डेनमार्क के खिलाड़ी मार्टिन के हाथों एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने पर दोनों ही खिलाड़ियों के 147 पॉइंट्स थे साथियों, जिसके फलस्वरूप खेल शूट ऑफ में पहुंचा और वहां भी स्कोर 10-10 से बराबर रहा, जिसके बाद डेनमार्क के खिलाड़ी का तीर बुल आई से ज्यादा नजदीक होने के कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। बात करें महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, तो वहां भी अदिति गोपीचंद स्वामी को अपने एस्टोनिया के प्रतिद्वंदी से वैसे ही हार का सामना करना पड़ा जैसे पुरुष एकल में कुशल दलाल को। अदिति और कुशल के मैच और शूट ऑफ के स्कोर्स तक बराबर रहे, मानो ऐसा लग रहा था कि उसी मैच को रिप्ले चला दिया गया हो, बस तीरंदाज बदल दिए गए हों। अदिति के साथ ही महिला कंपाउंड एकल में भारत की चुनौती समाप्त हुई।
1: और अब बारी है एक खास भेंटवार्ता और रिपोर्ट जो एक खेल से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री रिलीज पर आधारित है, और ये हमारे सहयोगी शाहिद आजमी के सौजन्य से है, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री मनसुख मांडविया बता रहे हैं कैसे एक छोटा सा मध्य प्रदेश शहडोल का बिचरपुर गांव, जो मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है, वहां फुटबॉल के प्रति प्रेम और परिवर्तन ने कैसे अपने भविष्य को नई दिशा दी है। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में बीती शाम एक ऐसी प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसने खेल और सामाजिक बदलाव की एक अनोखी मिसाल को देश के सामने रखा। डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिचारपुर जुनून फुटबॉल का, जिसे डीडी स्पोर्ट्स के सौजन्य से निर्मित किया गया है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव बिचारपुर की, जहां फुटबॉल अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि युवाओं की नई पहचान और बेहतर भविष्य की उम्मीद बन चुका है। खास बात यह है कि इस गांव और यहां के युवाओं के फुटबॉल के प्रति जुनून की चर्चा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है, तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहाँ से आ गया, यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है बिचारपुर। बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गाँव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था, तो मेरी मुलाकात वहाँ ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है।
2: इस विशेष स्क्रीनिंग में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया विशेष रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर मांडविया ने कहा,
4: एक बिचारपुर गांव और गांव में युवा कई व्यसनों की ओर आगे बढ़े थे, कई टाइप की समस्याएं थी। एक स्पोर्ट्स ने उसको कैसे दिशा दी, गांव को कैसे बदला, स्पोर्ट्स में क्या ताकत होती है, जब प्रसून जी बता रहे थे। दोस्तों, स्पोर्ट्स मेंटल एक्सरसाइज भी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी है। स्पोर्ट्स एक कल्चर है, स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट

0: I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
1: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
2: "A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
1: 100 terrorists were killed in the strike. Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashwani as well.
3: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है।
4: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post midnight, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
5: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
6: Indian Army carries out military Operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
1: Foreign Secretary Vikram Misri, while briefing the media about the operation, announced that India's response was focused, measured and non-escalatory in nature.
7: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
1: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
8: "हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है।
1: India's retaliatory response was unimaginable for the enemy. It was triggered by the deadly Pahalgam attack. On April 22nd, terror struck Pahalgam. Pakistan-backed attackers stormed a village, asked people their religion and killed them, resulting in the death of 26 people. It was a clear attempt to incite communal violence. This marked a shift from cross-border attacks to dividing India from within. In response, India launched Operation Sindoor to destroy the terror bases behind the attack. But Pakistan hit back harder. Over the next week, it used drones and shelling to target religious sites, the Shambhu Temple in Jammu, the Gurudwara in Poonch, and the Christian convents were attacked. These were not random strikes. These were part of a plan to break India's unity. To safeguard the honor of the nation, its military prowess roared. 11 major air bases were targeted.
9: I, Colonel Sofia Qureshi, POJK, ke targets, main aapko batana chahungi. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप भिंबर, अब्बास कैंप कोटली। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला सरजल कैंप सियालकोट, दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट, मरकज ताइबा मुरीद के, मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर,

0: 4,000 खिलाड़ी खो खो के सरकारी नौकरी पा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को ले लीजिए, वहां पे कोई ऐसा खो खो खिलाड़ी नहीं है जिसको कि वहां पे दाखिला ना मिल सके। ऐसे ही सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो खो खो के खिलाड़ियों को अपने यहाँ जो है इनवाइट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें खो खो को भी उन्होंने उसमें शामिल कर रखा है। और क्योंकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वर्ण पदक जीत रहे हैं इसलिए अच्छी अच्छी नौकरियां उनको मिल रही हैं। तो खिलाड़ी के लिए खेल का उत्साह और भविष्य में उसकी जो सिक्योरिटी है दोनों खो खो आज उसको दे रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि खो खो कुछ साल पहले था उससे एकदम से लोगों में उत्साह आया है और इतना उत्साहित होकर खो खो खेले।
1: बिल्कुल सर, और बेहद ही शानदार प्रदर्शन इस समय हमारी भारतीय टीम कर रही है। भले ही महिलाओं की बात करें, भले हम पुरुष की बात करें, अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल पर कि जो स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी लीग होनी चाहिए जिससे कि वो अपने फिटनेस का भी ध्यान दे सकें और खेलों से भी जुड़ सकें।
0: बिल्कुल आपने अच्छा कहा और यही हमारा प्रयत्न है। हमने क्या करा है, जैसे अभी तक तो राष्ट्रीय लीग थी, अब राज्यों में लीग चालू हो रही है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में लीग चालू हो जाएगी। तो जब नीचे के स्तर पर खेल उतरता है तो स्वाभाविक तौर पे लास्ट माइल का जो खिलाड़ी है उसको खेलने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो चीज जो है वो लोगों को, वो खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू मिल जाएगा उनको आगे बढ़ने के लिए।
1: और लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने अभी तक काफी बेहद ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है अपनी अपनी लीगों में, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ से जो खो खो खेलना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से हमारा यूथ खो खो से जुड़ सकता है?
0: यूथ से ये कहना चाहूंगा कि अपनी माटी का खेल जो है इसकी सुगंध, इसका सौंधापना उसको सूंघिए और अपनाइए इसको, क्योंकि अब ये सौंधापना विश्व भर में फैल रहा है।

0: दिन दूर नहीं है जब ओलंपिक में भी खो खो होगा, एशियन गेम्स में भी होगा और कॉमनवेल्थ में तो जल्दी होने वाला है। इसलिए ये ऐसा खेल है जिससे उनका भविष्य सुदृढ़ होगा और मनोरंजन की दृष्टि से खो खो निहायत ही मनोरंजक खेल है, इसको अपनाए वो।
1: और हाल में जब लीग हुई थी तो बेहद ही शानदार प्रदर्शन हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने किया था वहां पर। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, मगर बेहद ही दमदार प्रदर्शन द्वारा उन्होंने सभी का मन जीत लिया। और ये भी चलते चलते आपसे पूछेंगे, क्योंकि बच्चों की जैसे हम लोगों ने बात की कि आपने कहा कि शुरुआत बेहद ही जल्दी होने वाली है, तो बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे कि खो खो वो खेलें और अपने जो हमारा ग्रामीण खेल है उससे वो जुड़े?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि शारीरिक क्षमताएं जितनी इस खेल को खेलने से बढ़ने वाली हैं, वो किसी दूसरे खेल से नहीं होने वाली हैं। तो इसको अपनाएं, आपका खिलाड़ी के रूप में भविष्य इस खेल को अपनाने से है। क्योंकि मैंने ये कहा, ये खेल तो प्रिपरेटरी खेल है, इसको खेलने के साथ साथ किसी और खेल के प्रति भी आकर्षण होगा, तो ये खेलना उनको हमेशा मदद करेगा। जैसा मैंने कहा, इसके तीन जो गुण हैं, जो कि खास तौर से है कि स्पीड, स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस, ये तीनों चीजें जो है किसी भी खिलाड़ी के लिए आवश्यक होती है। इसमें स्ट्रैटेजी, जो मेंटल स्ट्रैटेजी है, उसकी इतनी इस आदत पड़ जाती है कि वो किसी भी खेल में उत्तीर्ण हो जाएगा।
1: बिल्कुल सुधांशु जी, बेहद ही अहम जानकारी आपने खो खो के दी, नियमों के बारे में ही बताया। और एक दूसरे आपने एक नया नियम बताया था कि परिवर्तन किया है वजीर, तो उसका क्या
0: जी
1: महत्व है, चलते चलते ये भी जरूर जानना चाहेंगे।
0: देखिए, खो खो पहले मिट्टी पे था, वो मैच पे आया है, जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल है। और वजीर की खूबसूरती है कि खो खो में जो चेजर होता है वो एक ही दिशा में जा सकता है, लेकिन वजीर जो है दोनों दिशा में जा पाता है। इससे जो है ये ज्यादा मनोरंजक हो गया और उसको पकड़ना, जो खिलाड़ी भाग रहा है उसको पकड़ना आसान हो गया है। इसलिए इसमें मनोरंजन भी बहुत हो गया है और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि अपने को कैसे बचाया जाए। ये जो नया नियम है, इसने खेल के अंदर बड़ा नया उत्साह पैदा कर दिया है।
1: और हमारे खेल प्रेमियों और यूथ के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा?
0: खोखो अपनाओ, तुम्हारी माटी का खेल है और भारत को गौरवान्वित करो।
1: बिल्कुल, और आकाशवाणी को समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खोखो में फिटनेस और अभ्यास, खोखो टीम कोच सुधांशु मित्तल से अभी बात कर रहे थे हमारे साथी मंजीत कौर।
3: और देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि खोखो खेलने से न सिर्फ आप खोखो में ही माहिर होंगे, बल्कि उससे आपकी स्टेमिना, स्पीड और जो आपका लचीलापन है वो बरकरार रहेगा, जिससे कि आप दूसरे खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसमें भविष्य की बात की तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए भी इसमें आगे बढ़ने का, तो अगर आपके पास भी इस खेल में अवसर हैं तो ज़रूर उसका लाभ उठाइए।
2: बिल्कुल, और फिटनेस अपनी बनाए रखिए। खास करके बात करें कुछ स्वास्थ्य को लेकर के, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हम बात करते हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और जिसका उद्देश्य देश के सभी लोगों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी।
3: और देखिए, सबसे अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो नवजात शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसमें विशेष जोर दिया गया, क्योंकि अगर स्वस्थ माँ होगी तभी वो एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है।
2: बिल्कुल,
3: और इससे ही हम आगे की जो हमारी पीढ़ी है वो स्वस्थ होगी। और इसके साथ साथ जो बीमारियाँ हम देखते हैं मौसम के साथ साथ, मलेरिया, टीबी, डेंगू, कुष्ठ रोग जैसे कई ऐसे संक्रमण है जिसके ऊपर भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है कि सबको इस इन सब बीमारियों से निजात मिल पाए और उचित सेवाएं उनको मिल पाए। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रों के द्वारा मुफ्त में दवाएं और सेवाओं भी प्रदान की गई है, ताकि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह सके।
2: बिल्कुल, और मातृ और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो उसको कम करना है इसका उद्देश्य। इसका संक्रामक और गैर संक्रामक जो रोगों की बात करें तो उसकी रोकथाम भी करना है। गरीब और कमजोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी देना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, गैर सरकारी अस्पतालों में सुधार भी करना है इसके साथ साथ। और एक बात और कहीं, आशा कार्यकर्ता भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आगे बढ़ाने में, तो थोड़ा हमें भी जागरूक होना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना होगा, तभी किसी मिशन को सफल बनाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, तो ये तो रही हमारी इस योजना के बारे में बातचीत, और अब करवाते हैं
2: मनोरंजन
3: और रितेश दलाल की आवाज में सुनवाते हैं आपको ये।

0: अभी आप सुन रहे थे रितेश दलाल की आवाज में ये रागनी।
1: और सच कहें तो आज हमारा जो ग्राम संसार कार्यक्रम ये चल रहा है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के हम काफ़ी सचेत हैं। और आकाशवाणी का जो 90 वर्ष पूरा हुआ उसमें भी देखा जाए तो मैराथन का आयोजन किया गया, और साथ ही साथ जो हमारा बातचीत का विषय था खो खो में फिटनेस और अभ्यास, इस पर भी फिटनेस को लेकर के बात की गई। और खास करके योजना की हम बात करें तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो योजना थी उसमें भी स्वास्थ्य को लेकर के हमने सचेत किया।
0: बिल्कुल, देखिए बातचीत हमने की लेकिन सबसे पहला प्रयास हमारी तरफ से ही होना चाहिए। अगर हम सुबह की बात करें तो हमें थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए, और फिर अगर आप दौड़ना चाहें जिस जैसे भी आपकी स्टेमिना है, लेकिन रुकना नहीं है, चाहे दौड़ें चाहे भागें चाहे
1: कुछ भी करें,
0: टहलें,
1: साइकिल चलाएं,
0: हाँ
1: कुछ भी
0: योगा
1: करें।
0: करें, जिस तरीके का भी व्यायाम आप करना चाहते हैं, तो हल्का फुल्का व्यायाम हमें अपनी अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक बात और बता देंगे, जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा समाचार के बाद कृषि जगत, उसमें आपको फल सब्जी और मिलेट्स की बातें हम करेंगे, उसके स्वास्थ्य के प्रति क्या लाभ है उसे बताएंगे, और साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर भी योजना के बारे में हम बताएंगे।
0: बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण अपने श्रोताओं को याद दिला देते हैं कि कल है शनिवार, और शनिवार को आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसके लिए हमारे श्रोता फोन से जुड़ते हैं और हमें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में जानकारी देते हैं। तो जिन भी श्रोताओं ने फोन किया या जो भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। और साथ साथ ये भी बता दें, हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर, कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल। तो अब करते हैं सभी भाइयों बहनों को अपना राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम TVK को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली VCK पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ की

0: उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम
1: राम
0: राम।
1: राम। देखिए भाई, गर्मी का मौसम है और गर्मी में शरीर को ठंडा रखना और हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि पानी। तो कहा जाता है कि भाई रोज़ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए, जिससे कि हमारी जो शरीर की उसमें पानी की कमी ना होने पाए और हम तरोताज़ा रहें। और इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थों को अपने खान पान में शामिल कीजिए, जैसे नींबू पानी है, आम पना है, बेल का शरबत है, लस्सी है, पुदीने का सेवन कीजिए, जो कि हमारे शरीर को ठंडक देते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है सत्तू, सत्तू को घोल बना करके उसकी पीजिए, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है और तरावट अपने शरीर में बनाए रखता है। और खास करके आपने फलों की भी बात की है, तो फल की हम बात करें तो तरबूजा है, खरबूजा है, देखने में लाल और खाने में स्वादिष्ट। और साथ ही साथ खरबूजे की बात करें, खीरे की बात करें, तो पानी की कमी को वैसे ही पूरा कर देता है।
1: बिल्कुल। और देखिए, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, पालक, पुदीना, ये तमाम तरह की ऐसी गर्मियों में हमें प्रकृति ने मौसम के अनुसार ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है कम ना हो पाए और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। और नई नई नई डिशेज अगर हम इनकी बनाते हैं तो भाई एक ये भी रहता है कि जब बदलाव होता है ना खान पान में, तो उसका भी आनंद आता है कि एक तरीके के भोजन से जैसे बोर हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जिनका सेवन आप कर सकते हैं। तो अगर बेल के शरबत की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इसकी तो तासीर होती है, वो भी ठंडी होती है।
0: और
1: और
0: पेट के
1: अभी
0: लिए बहुत ही
1: हाँ, और
0: लाभदायक।
1: बाजार में अभी देखेंगे भी आपकी भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। और जब मौसम के अनुसार हम फल सब्जियों का चयन करते हैं तो हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती है, हमें वाजिब दाम में वो बाजार में उपलब्ध भी हो जाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और सबसे बड़ी बात है बच्चों की, अगर हम बात करें तो बच्चे बड़ा नानुकुर करते हैं कुछ भी खाने में, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ चीजें पसंद नहीं होती, तो जैसे आपने कहा उसका परिवर्तित रूप हम कुछ कर
1: हाँ
0: करके पिला सकते हैं, खिला सकते हैं।
1: हाँ
0: तो जैसे आप खाने की बात करें, हरी सब्जियों में बहुत ही, तरोई की सब्जी हमें नहीं खानी है, तो हमें भिंडी नहीं खानी है, हमें पालक नहीं खाना, तो पालक पनीर खा लेंगे भाई, नहीं
1: हाँ
0: कुछ और ऐसा बनाएंगे जो उससे अच्छा बन सके, पालक का कोफ्ता भी बना लेते हैं हम लोग। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बना करके हम उनको खिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा।
1: हाँ और ये भी एक गर्मियों में बाहर की चीज़ों से परहेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय देख रहे हैं कि पेट की गड़बड़ सबकी चल रही है, तो जो भी खाना है आप घर पे बनाएं, क्योंकि घर पे हम उसे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। बाहर तो कई बार क्या होता है, अगर हम मान लो फ्रूट चाट भी खा रहे हैं तो उसमें भी कप का कटा हुआ है, वो कैसा उसमें मिर्च मसाला डला है, मक्खियाँ भी भिन बनाती रहती हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप घर पे ही ला के और स्वच्छता के साथ उसे काट धो लें पहले और फिर काटें और फिर उसका सेवन करें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर पहले से कटी फटी चीज़ें होती हैं उनसे हमारा पेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो अपने खान पान का रखें ध्यान और मिर्च मसाले का कम से कम प्रयोग कीजिए इस समय। और जैसे रात के समय में हल्का खिचड़ी का या दलिए का सेवन आप करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
0: कुल मिला के ये कहना चाह रही प्रियंका कि गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें, तली वाला पदार्थ बिल्कुल ना खाएं, पिए बाहर की चीजें, कटे फटे फल पर बिल्कुल ध्यान न दें, उसे ना खाएं, घर में लाएं, अच्छे से धोएं फिर खाएं। और रही बात खान पीन की, जब हम अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो स्वास्थ्य भी हमारा बहुत ही अच्छा ही होगा।
1: बिल्कुल। और देखिए, अनाज की बात करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हम मौसम के अनुसार करते रहना चाहिए। अब तो देखिए रागी का डोसा भी बना सकते हैं और बाजार में भी
0: बिस्किट है, बहुत सारी
1: हाँ,
0: चीजें बन रही हैं।
1: अब देखिए इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा है। जहाँ पे मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो उसे खाने में तो वो पौष्टिक है, ईश्वरीय अन्न का नाम दिया गया है, लेकिन उसको उगाना भी कहते हैं कि भाई ये बंजर भूमि में भी हो जाता है और ये देखभाल की भी अधिक आवश्यकता नहीं होती। और अब तो जब से मिलेट वर्ष पूरे साल हमने मनाया तो उससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एक फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी परंपराओं की तरफ लौटें और अपनी थाली में से जगह दे रहे हैं, क्योंकि इसके स्वास्थ्य लाभ बहुत ही अधिक है। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे काफी हट्टे कट्टे होते थे और अभी हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ही जान नहीं है, क्योंकि हम अपनी परंपरा से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से नए तरीके से, आप उसे नई नई डिशेज बना के अगर बच्चों को भी खिलाएंगे तो आदत तो उनकी अभी से बन जाएगी, तो फिर वो भी धीरे धीरे उसका स्वाद
0: कुल
1: लेंगे।
0: मिला के ये भी कहना चाह रही हूँ प्रियंका कि कम लागत में अधिक मुनाफे वाली चीज खेती बाड़ी हम कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और रही बात कि श्री अन्न की बात, तो उसमें थोड़े से बदलाव, जैसे आपने कहा आटे की रोटी की बात होती है, हम लोग रोटी भी खाते हैं, लेकिन रोटी जो हम खाते हैं सिर्फ आटे का अगर खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मक्का, थोड़ा सा रागी, और अगर समय देखें तो तासीर गर्म होती है बाजरे की, तो उसे ना मिलाएं। और थोड़ी सी ये मक्के के साथ और रागी के साथ थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना, उसका भी थोड़ा सा सत्तू मिला ले, तो बहुत ही मिस्सी रोटी, स्वादिष्ट मिस्सी रोटी तैयार होगी। आप उसे जब खाएंगे चाव से तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और पाचन तंत्र भी आपका सही रहेगा।
1: बिल्कुल। और
0: और
1: अब श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: जयप्रकाश शर्मा की आवाज में अभी आपने सुना ये उपदेश। और प्रियंका, आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। तो ये भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य है उन्नत तकनीकों, बेहतर बीजों, पोषक तत्वों के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल जैसे कि कपास, जूट, गन्ने का उत्पादन बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरता को पुनर्जीवित करना।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य की जैसे हमने बात की तो चावल, गेहूँ, दालें और जो मोटे अनाज हैं और तिलहन का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी करना है, और साथ ही साथ जो कृषि उत्पादकता में है उसमें सुधार लाना है और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराना है, और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता की जैसे बात की, और साथ ही साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा देना है, और खाद्य सुरक्षा कैसे हो सके इसे सुनिश्चित करना है। और खास करके जो हम कृषि तकनीक की बात कर रहे हैं तो आजकल देखा जाए तो जो गांव में जो खेती किसानी बाड़ी कर रहे, तो पहले जो होता था तो ये हम इस पे मशीन पे नहीं डिपेंड होते थे, वैसे ही हम अपने पुराने प्राकृतिक तरीके से काम करते थे, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कृषि यंत्रों का एकदम चलन है और कृषि यंत्रों के जरिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। खास करके जो नव युवा है उनको कहीं बाहर जाके पलायन करने की जरूरत नहीं, अगर वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो शिक्षा ले सकते हैं, और कृषि शिक्षा लेकर के अपनी कृषक जो जीवन चल रहा है, जो उनकी एक पीढ़ी आ रही है उसको बढ़ा सकते हैं, उसी में उन्नति खेती कर सकते हो।
1: बिल्कुल यमुना बहन, आपने कृषि यंत्रों की बात की तो सचमुच कृषि यंत्रों से तो कहते ना घंटों का काम मिनटों में लगा है, और अभी मजदूरी भी इतनी महंगी हो गई है कि अगर मशीन से हम काम करते तो वो हमें ज्यादा सस्ता पड़ता है, और देखा गया है कि समूह बना के हमारे जो किसान भाई हैं वो मशीनरियों का प्रयोग भी कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। और नई तकनीकों की बात करें तो सिंचाई की जो नई तकनीकें जैसे फव्वारा की विधि है या ड्रिप के द्वारा जो है उसमें कम पानी में भी अधिक उपज ले रहे हैं, इसके साथ साथ मल्चिंग के द्वारा सब्जियों की जो खेती की जा रही है या स्टेकिंग के द्वारा जो बेल वाली सब्जियों की खेती की जा रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो नई तकनीकों से जुड़ने वाले हमारे किसान हैं वो बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रख रखाव में बदलाव आया है उस तरीके से

0: मतलब सब्जियां जो होती हैं 2-3 महीने में हमें वो अपनी उपज दे देती हैं, और उसकी तुड़ाई भी 3-4 बार हम कर पाते हैं। तो इससे हमारे जो किसान भाई हैं वो नई तकनीकों का प्रयोग करके अधिक लाभ कमा रहे हैं, और सब्जियों की खेती में बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। पारंपरिक खेती में जहाँ
1: जैविक विधि
0: गेहूँ
1: से।
0: और सिर्फ सरसों या गेहूँ करते थे, तो अगर आपके पास भी छोटी ज़मीन है तो ये ज़रूरी है कि आप नई तकनीकों का उपयोग करके सह फसली भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अधिक लाभ ले सकते हैं। तो नई नई तकनीकों का प्रयोग कीजिए और अपनी आय को दुगना कीजिए। ये सरकार का भी लक्ष्य है, और हमारे कार्यक्रम में भी हम अपने श्रोताओं से यही बात करते रहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और सोंधी मिट्टी से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हमारे किसान न हो तो हमारी थाली में भोजन नहीं आ सकता है। तो रुपए पैसे खा करके तो काम चल नहीं सकता प्रियंका। तो खेती किसानी जो हमारे जुड़े हुए हमारे किसान लोग, उनके लिए हम यही चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक लाभ पाएं और वो अपने खेती किसानी से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ी को भी उससे जोड़ें, और कृषि जो यंत्र है उसका सदुपयोग करें, और सरकार जो योजनाएं बना रही है उसका पूरा पूरा जागरूक होकर के लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं अतुल कुमार की आवाज़ में आपको ये।
2: हाँ।

0: अतुल कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश।
1: भाई धरती की तो विशेष भूमिका होती है खेती बाड़ी में, और अगर अभी फसल कटाई के बाद खेत खाली हो गए और खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे ताकि सूर्य के तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे हुए कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं, और उसके बाद आप खेत की तैयारी कीजिए और हरी खाद आप बो सकते हैं जिससे जिसमें कि ढेंचा, सनई, लोबिया इत्यादि आप बो सकते हैं। और इसके लिए आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है, और इससे फायदा ये होता है कि हरी खाद 40 दिन के आसपास इसकी कटाई हो जाती है और इसे हम मिट्टी में मिला देते हैं जिससे कि हमारी जो मिट्टी होती है उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है और उसमें पोषक तत्वों की फिर हमें कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हरी खाद से ही उसमें काफ़ी तत्व जो उसमें मिला दिए जाते हैं उससे हमारी जो भूमि होती है वो भुरभुरी हो जाती है और काफ़ी उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
0: बिल्कुल प्रियंका, और टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में अगर देखें तो फलों के फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान में देखें तो किसान खेत में जो है अच्छी बसेरा लगाएं और वे कीट नष्ट करने के लिए फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें, साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी करते रहें। और साथ ही साथ देखें तो यदि कीट की संख्या अधिक हो तो एक तरीके से छिड़काव करना होता है बीटी 1.10 की बात करें तो पानी की दर छिड़काव करें, फिर भी प्रकोप अगर अधिक हो तो 15 दिन बाद उस कीटनाशक दवा डालें। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो फसल होती है उस पर विशेष ध्यान देना होता है जिससे जो हमारी खेती किसानी हो फलती फूलती रहे और अच्छा हम उत्पादन पाते रहें।
1: बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई रखें इन सब बातों का ध्यान। और अब आपको सुनवाते हैं प्रवीण कुमार की आवाज़ में ये

0: अभी आप सुन रहे थे प्रवीण कुमार की आवाज में ये डाकनी।
1: बिल्कुल, और चलते चलते अपने कार्यक्रम का हम पता बता देते हैं। पहले ईमेल का है feedback@gmail.com और जो हमारा पत्राचार का पता है कृषि एवं गृहकांश कमरा नंबर 610 नौ प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली पिन कोड है 110001। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार बारा सर और कार्यक्रम के संयोजक है
0: शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं भूपिंदर की आवाज में एक और गजल।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा गजल कवाली का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं

0: का संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
1: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: मैराथन में विजयी रही प्रतिभागी ने अपने विचार साझा किए।
4: मेरा नाम भूमिका वार्ष्णेय है, मैं अभी डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत हूँ CISF में और पार्लियामेंट सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मैराथन में पार्ट लेके, और बहुत ही यूनिक डिस्टेंस था 3.5 किलोमीटर का, जिसको मुझे करने में बहुत मजा आया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जो है इसमें प्राइज भी मिल गया, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट का उद्देश्य स्कूलों में मौजूद कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। यह निर्णय रूपनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण के बाद लिया गया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कक्षाओं में विद्यार्थियों से बातचीत कर पेयजल, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता और गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं सहित शैक्षणिक की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के विकास मंत्री और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने आज सोनिया विहार में 70 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र में तैयार लिंक गलियों का भी लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि करावल नगर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और सभापुर में भी जल्द यह परियोजना शुरू होगी। इससे जल भराव और गलियों की समस्या दूर हो जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक और पार्षदों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा फंड की कमी रहती थी, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का फंड देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, पुस्ता सड़क को बेहतर बनाने और क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख ध्यान बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर रहेगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में वृद्धि करने पर भी चर्चा होगी। बैठक में सामुदायिक जागरूकता, जानमाल का नुकसान रोकने के लिए आसान कार्यक्रम तथा आवश्यक राहत और चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 14 आरोपियों को गीता कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह ऑनलाइन नौकरी दिलाने, वर्क फ्रॉम होम और हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 8 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी के लिंक सामने आए हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्कूली विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क प्रकोष्ठ और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 18 मई से 5 जून तक 4 यातायात प्रशिक्षण पार्क में ग्रीष्मकालीन शिविर भी

0: आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रोड रडार मिशन के अंतर्गत दिल्ली की लगभग 18,000 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण हॉटस्पॉट, धूल, कचरा और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए हर जिले में 13 फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो रोजाना सड़क सर्वे कर एमसीडी 311 ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज करेंगे। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने आज शाहदरा के रामनगर वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और जन सुविधाओं का जायजा लिया। उप महापौर ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इससे विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी प्रक्रिया को करीब से समझा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर, अभिलेखीय दस्तावेजों और शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक का अवलोकन किया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। इन विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना होगा। प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर आज दिल्ली नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री वाही ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों, झुग्गी, बस्तियों और धर्मस्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हर 15 दिन में नियमित कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति धीमी रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में आईटीओ, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइंस, पटेल नगर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय विमान कंपनी इंडिगो इस वर्ष 15 जून से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। इस हवाई अड्डे से किसी विमान कंपनी की ये पहली उड़ान सेवा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश भर के 16 से अधिक शहरों से सीधी उड़ान के माध्यम से जोड़ेगी। इनमें बेंगलुरु और हैदराबाद महानगरों के साथ साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई और श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। 15 जून को पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए होगी। ये उड़ान लखनऊ से सवेरे 7:05 पर रवाना होकर सवेरे 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। नोएडा से बेंगलुरु के लिए भी पहली उड़ान शुरू की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की परिकल्पना विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच विचार विमर्श और परस्पर समझ को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री

0: कराने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्रालय ने कहा है कि पूरी तरह से प्रशिक्षित और आत्मविश्वास से भरे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च स्तरीय अस्पताल इकाइयों पर बोझ कम करने और स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन वृद्धावस्था के दौरान लोगों को निर्बाध मासिक आय प्रदान करती है। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है रूपक आवाजों का सुनहरा सफर, रेडियो नाटक। शोध, आलेख, स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी। ये रूपक उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और अभिनय प्रतिभा से रेडियो नाट्य विद्या को निखारा और पल्लवित किया, और हम इसे उन सभी श्रोताओं को भेंट कर रहे हैं जो हमारे नाटकों को सुनते आ रहे हैं। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, तब रेडियो नाटक देश में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तब मनोरंजन का प्रमुख साधन वो नाट्य मंडलियां हुआ करती थी, जिनके प्रभाव से रेडियो नाटक भी अछूते नहीं रह सके। इनमें पारसी रंगमंच, नौटंकी और अन्य लोक शैलियां शामिल हैं।
2: देवी, मेरी तपस्या में आखिर कहां कमी रह गई? आज मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ?
3: महाराज, अब आपको भला मैं क्या बता सकती हूँ?
4: अपने मुंह से भला अपनी कैसे कहूँ, अपने मुंह से भला

0: शुरू शुरू में किसी भी नाटककार से रेडियो के लिए नाटक लिखवाना कठिन था, क्योंकि उनकी राय में ऐसा कोई नाटक हो ही नहीं सकता था जिसमें शुरू से आखिर तक बातचीत ही बातचीत हो और सुनने वालों की समझ में ये ना आ सके कि ये बातचीत हो कह रही है। लेकिन धीरे धीरे वो समय आया जब रेडियो नाटक श्रोताओं को ना केवल समझ आने लगे बल्कि उनकी रेडियो नाटकों में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। आकाशवाणी के जाने माने कलाकार श्री नीरज शर्मा।
1: देखिए, रेडियो नाटक वो फलसफा है जो हमें जीने का पूरा सिद्धांत सिखाता है। हम जो नहीं हैं वो बनकर जी सकते हैं

0: और एक बड़ी खास बात है, आप फिल्म देखिए, टेलीविजन देखिए और रेडियो सुनिए। फिल्म देखने के लिए आपको कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, टेलीविजन देखने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। टेलीविजन की साउंड ऑफ कर दीजिए आप, पिक्चर कितनी देर देख लेंगे, लेकिन रेडियो, रेडियो के जब आप ऑन करेंगे और उस पर नाटक आ रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रही हो महिलाएं, नाश्ता कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, वो आवाज़ उनके कान में पड़ेगी, उनको सब सुनाई देता रहेगा। तो रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और नाटक उसका जीवन है, उसका प्राण है, जिसको हमने कोशिश की हम लोगों ने जीवंत रखने की और आगे भी रखेंगे।
1: आदिकाल से ही नाटक, जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है, भारत में प्रधान कलाकृति के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन इस शास्त्र के साथ साथ रेडियो नाटक के अलग अस्तित्व को स्वीकार करना किसी भी लेखक या निर्देशक के लिए आसान नहीं था। शुरू में बम्बई और कलकत्ता के रेडियो स्टेशनों से कभी कभी नाट्य कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उनमें श्रोताओं को उस समय के जाने पहचाने रंगमंचीय कलाकारों द्वारा रंगमंचीय शैली में प्रस्तुत मराठी, गुजराती, बंगला, हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय रंगमंचीय नाटकों के अंश ही सुनने को मिलते थे।
2: मैं कुछ अधिक ही बलहीन हो रहा हूँ, आखिर मैं प्रजापालक हूँ, ये मुझे शोभता नहीं है। लक्ष्मण ले आओ।

0: दिल्ली रेडियो स्टेशन में रेडियो नाटक का सही और पुख्ता स्वरूप नजर आया सन 1940-41 में, जब उर्दू और हिंदी के जाने माने नाम सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और उपेंद्रनाथ अश्क यहाँ के स्टाफ में शामिल हुए। उन दिनों कृष्ण चंदर और सादत हसन मंटो आकाशवाणी के ड्रामा एकांश में काम करते थे। शुरू में नाटकों का लाइव प्रसारण होता था। इफेक्ट्स के लिए नाटक स्टूडियो में पर्दे लटके होते थे, बीचों बीच एक पंखा लगा होता था और भी कुछ उपकरण लगे होते थे, क्योंकि नाटक लाइव प्रसारण होते थे इसलिए सभी तरह के इफेक्ट्स भी उसी समय तैयार करने होते थे, चाहे वो घोड़े दौड़ने का हो, हवा आने या तूफान आने का। उन दिनों इफेक्ट्स के लिए कुछ रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध थे, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट्स स्टूडियो में ही तैयार किए जाते थे।
1: पहले जब रेडियो नाटक लाइव हुआ करते थे, तब की कुछ बातें मुझे याद हैं, मैं सुनाता हूँ। एक प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तीन कैरेक्टर थे उसमें। दो कैरेक्टर की बातचीत चल रही थी आपस में। बात करते करते किसी झोंक में एक कैरेक्टर, ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, ये कहता हुआ एग्जिट मार गया। पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठे थे, उन्होंने कि लाइव प्ले चल रहा है, मैं क्या करूंगा। अचानक ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने गलत एग्जिट मार दी है, और जो व्यक्ति माइक्रोफोन पर खड़ा था वो भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि आगे तीन चार पेज लंबा सीन था। अचानक जिन्होंने एग्जिट ली थी वो आए, अरे रामलाल जी वो मेरी कैप यहाँ रह गई, देखें कहाँ है, हाँ हाँ ये रखी है, इस कैप के बगैर मैं चल नहीं पाता। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस विषय में ये जोड़कर उन्होंने आगे का सीन शुरू कर दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताया भी जाता था, हम देखते भी थे कि आकाशवाणी के स्टूडियोज की कॉरिडोर में ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले यानी 9 और 9:30 के बीच में कलाकार अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर और पसीने आ रहे हैं और स्क्रिप्ट से मार्किंग करते करते करते करते चले जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते थे।
0: रेडियो नाटक की जब हम बात करते हैं तो रेडियो नाटकों में भाषा का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो चीज श्रोता देख नहीं सकता, कानों के माध्यम से एक चित्र की तरह वो उस चीज को देख सके। शब्दों से ही चित्रों का निर्माण करना होता है। रंग रूप की झांकी भी प्रस्तुत की जा सकती है। रेडियो नाटकों की भाषा ऐसी होती है जिससे लगे कि शब्द बोल रहे हैं, चित्रों का निर्माण कर रहे हैं।
1: रेडियो नाटक बहुत ही दिलचस्प विधा है, समझ में आ जाए तो बात क्या बात है, बहुत मजा रहता है। असल में इस वक्त तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक समय था कि जब रेडियो नाटक लाइव होते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। 70s और 80s की बात है कि जब रात को 9:30 नाटक ब्रॉडकास्ट होते थे, तो आमतौर पे घरों में हम लोग क्या करते थे कि घर की लाइट ऑफ कर दी और नाटक सुनने लगे। तो नाटक सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे आपके सामने

0: शब्द चित्र बन गया, यही रेडियो नाटक है कि जब आप बोलें तो सुनने वालों को शब्द चित्र बन जाए, चलचित्र की भांति उनके सामने सब उनको दिखाई देने लगे।
1: जब रेडियो नाटक लिखे जाते हैं तो संवादों को कैसे लिखना है इस बात का खास ख्याल रखना होता है। नाटक के पात्र शब्दों के माध्यम से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है।
2: आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो के लिखे नाटक तीन खामोश औरतें का एक अंश।
3: क्यों बहन, सुनी थी आपने इस खामोश औरत की बातें? माफ करना बहन, मैंने वाकफियत के बगैर ही आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी। दरअसल उस औरत की बातों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था।
4: नहीं भिन्नो, इसमें माफी की क्या बात है?
3: मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगी?
4: खंडवा।
3: खंडवा? तो आप खंडवा जाएंगी? ये खंडवा कहाँ हुआ?
4: झांसी के पास।
3: झांसी के पास, अच्छा। आपके साथ कौन है?
4: मेरा भाई।
3: तो वो स्टेशन पर आपके भाई थे? बड़े के छोटे?
4: बड़े भाई।
3: क्या बरस बड़े होंगे आपसे?
4: 2 बरस।
3: और आपका नाम?
4: महमूदा।
3: मेरा नाम शमशाद है।
4: जी अच्छा।
3: आपके भाई साहब का नाम?
4: खान महमूद उमर खान।
3: खान महमूद उमर खान।
4: जी।
3: मेरे भी 2 भाई हैं।
4: अच्छा।
3: एक मुझसे बड़ा, एक छोटा।
1: मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन रंगमंच के लिए लिखा गया था, लेकिन रेडियो के लिए भी मोहन राकेश ने ही उसका रूपांतरण किया।
5: माँ, माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगोकर आ गई हूँ।
1: इस पूरे संवाद में एक तस्वीर सी उभर कर सामने आई है श्रोताओं के सामने। संवाद जब लिखे जाते हैं तो पात्रों के मुताबिक ही लिखे जाते हैं। आकाशवाणी के रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई जानी मानी कलाकार माला कुमार अपने यादों को साझा करते हुए।
3: रेडियो नाटक एक इतना सुंदर गहरा माध्यम है जहाँ आप अपने तन मन धन से और अपने पूरे आपकी जो अंतरात्मा है उसमें आप लीन होकर अपने संवाद बोलते हैं एक माइक के थ्रू और अपने सह कलाकारों के साथ, जिसमें एक स्टूडियो है और उसके ज़रिए आप तक सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, एक पूरा नाटक तैयार होता है और एक ये बहुत ही अद्भुत बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। और मैं इससे जुड़ने का मुझे जो एहसास है जो एक्सपीरियंस है वो सर आँखों पर और इससे सुंदर मीडियम मुझे कहीं नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन, वो एक रेडियो नाटक के माध्यम से ही होता है। और बहुत से नाटकों में किया है, इसमें तरह तरह के भावनाएं, तरह तरह के इमोशंस को आप अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी सांसों के ज़रिए जो करने को मिलता है वो मुझे लगता है कि कैमरा में भी बहुत कुछ होता है इस तरह से, लेकिन उसमें आपके चेहरे से आपको वो समझते हैं दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर रेडियो नाटकों में आपका कोई चेहरा नहीं देखता है, आप कितने भी उम्र के हों, एक जवान रोल आप कर लेते हैं, आप 50 साल की हैं आप 20 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, आप 20 साल की हैं 60 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, एक वृद्धा का रोल कर सकते हैं, ये सब आपकी आवाज़ का खेल है।
1: रेडियो नाटक में कई बार नरेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से है जिसमें पात्र वही कार्य संपन्न करता है जो कहानीकार करता है। ये पात्रों का आपस में संवाद नहीं होता बल्कि एक पात्र का ही वक्तव्य होता है। इसके जरिए देश काल का परिचय दिया जाता है, जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, विवरण दिए जाते हैं, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है। नरेटर यानी सूत्रधार, जो बातें संवादों में नहीं आती और जिनका नाटक में आना जरूरी है उन्हें नरेशन में रखा जाता है और सूत्रधार के जरिए वो बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर सूफी कवि

0: लल्लेश्वरी पर लिखे गए नाटक प्रेम का सुर आस्था का संगीत। इस नाटक में जेहलम और चिनार को नरेटर बनाया गया। जेहलम और चिनार सूफी कवित्री लल्लेश्वरी की कहानी के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहानी शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में आकर कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं और घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं। ललदत्त यानी लल्लेश्वरी हमारी सूफियाना विरासत और भक्ति परंपरा की महान कवित्री, हमारे देश में अनेकता में एकता की कड़ी है लल्लेश्वरी। लल ने अपना फलसफा कश्मीरी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनके वाक्यों में सूफी, सनातन पंथ, इस्लामी सिद्धांत और शैवनाथ सभी मौजूद थे। लल के लिए प्यार ही खुदा था और आपसी भाईचारा बंदगी। लल ने बंधुओं से बंदगी, आपसी भेदभाव मिटाकर धर्मों की समानता पर बल दिया।
1: मैं समय की धारा के साथ आज आ पहुंचा हूं धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की वादी में। आज इसी वादी में घूमते घूमते मैंने सदियों से बह रही झेलम को देखा तो मन में आया कि जैसे दादी नानी की कहानियां पुरखों से चली आ रही हैं, उसी तरह इस प्राचीन नदी ने भी तो अनेक राजाओं का शासन देखा होगा, अनेक साम्राज्यों का पतन देखा होगा। कितनी महान हस्तियों को कभी शिकारे से इस पार, कभी उस पार पहुंचाया होगा। इसमें चल रहे चप्पुओं की मधुर आवाज ने कितने संगीतज्ञों को उद्वेलित किया होगा, प्रेरणा दी होगी। सदियों से इसके किनारे खड़े वादी की धरोहर, हर मौसम में रंग बदलते चिनार खुद झेलम के हर रंग से परिचित हैं। साक्षी हैं ये दोनों हमारी वादी की सभ्यता के, इसकी संस्कृति के। इन दोनों का एक अटूट रिश्ता है।
0: अगर रंगमंच या फिल्मों की हम बात करें तो यहाँ पर मूक अभिनय भी हो सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद रहित रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से रेडियो नाटक की कला संवाद लेखन की कला है। रेडियो नाटकों से जुड़े अपनी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के जाने माने नाट्य कलाकार नीरज शर्मा।
2: मुझे एक प्ले की बात याद है, पंडित दीनानाथ जोशी बहुत सीनियर कलाकार थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो अपनी स्क्रिप्ट पे ऐसे मार्किंग करते थे कि दूर से भी उनकी स्क्रिप्ट नजर आ जाती थी कि इसमें क्या लिखा है, पेन से गड़ा कर देते थे। अच्छा, खास बात थी वो उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में पढ़ते थे। एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास था धरती धन्ना अपना, मैं था उसमें, सुचित्रा जी थीं, वीना जी थीं। तो एक कुछ रोमांटिक सीन था तो मैं और वीना जी हम लोग उस रोमांटिक सीन के रिहर्सल कर रहे थे, तो जरा आवाज़ें हल्की हल्की हमारे मुंह से निकल रही थी। मैं भी उन दिनों बहुत नया था तो बहुत ज़ोर से नहीं बोल रहा था और वीना जी भी मेरे साथ साथ हल्के हल्के बोल रही थी। पंडित दीनानाथ जोशी दूर बैठे थे, बोले अरे भाई ज़ोर से तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, स्क्रिप्ट में कहाँ है। तो डायरेक्टर महोदय बोले पंडित जी ये सीन आपके सुनने के लिए नहीं है, ये बोला सब मिठा का गूंज गया। एक दफा की बात है कि एक प्ले रिकॉर्ड हो रहा था कल नहीं लौटेगा, दीनानाथ जी उसका निर्देशन कर रहे थे और वो एक भाई बहन की कहानी थी। भाई ने तीज पर बहन को धानी चुनरिया ला के दी और झूला झूलते हुए बहन धानी चुनरिया के गीत गाती है, भाई उसको रिकॉर्ड कर लेता है। होता यह है कि शादी के बाद वो उसको लड़की को मार देते हैं। सीन ये था कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर रो रहा है और माँ आकर उसे चुप कराती है। दीनानाथ जी बोले भाई नीरज ये सीन हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब सिर्फ तुम दोनों हो गए, यानी माँ और बेटा। एक खास दिन हमको बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग रख दी गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको प्ले किया गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गोपाल सक्सेना जो थे वो असिस्ट कर रहे थे दीनानाथ जी को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इशारा मिला और हमने उसको सुनना शुरू किया और धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। रिएक्शन करते करते, रिएक्शन देते देते सच में रोना आ गया और वाकई में रो पड़ा उसके अंदर। माला जी आई जो माँ का रोल कर रही थी, माला गुप्ता, उन्होंने मुझे चिपका लिया सीने से अपने और कहा नहीं बेटा ये वो तेरी सब कुछ नहीं थी, वो मेरी भी बेटी थी, ये डायलॉग था, ये कह के मुझे चुप कराया। सीन वाइंड अप करके जैसी हमने ग्लास के उधर कंट्रोल रूम में देखा तो दीनानाथ जी सर पे हाथ धर के बैठे हुए थे और गोपाल जी अवाक आंखें बाहर मुंह खुलाए।

0: से बैठे थे, अब समझ भी नहीं आया कि रिकॉर्डिंग होगी नहीं हो गई। तो मैं कंट्रोल रूम में गया और जाके मैंने पूछा जी रिकॉर्डिंग हो गई, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा जी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक हो गया करके बोला, मैंने इसे कहा था कि बड़ा टेप ले, टेप खत्म हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। अब ये मानिए कि घड़ों पानी पड़ गया ऊपर से नीचे तक, कि इतना इमोशनल सीन एक बार जो हो गया वो दोबारा होना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश की, सीन को किया। सीन करने के बाद जब सुनने लगे जाके, तो गोपाल जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े, कहते मैं जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, लास्ट की जो सिसकियां थी मैं उनको जोड़ दूंगा। और गोपाल जी ने वाकई उस सीन को जोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये सीन दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन वो किस्सा आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि क्या ज़माना था। अगर वो नहीं जुड़ पाता तो शायद वो सीन नहीं हो पाता उस तरीके से।
1: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा, उनका काम जैसी बातों से श्रोताओं को परिचित करवाया जाता है। आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, पात्रों के भाव और विचारों को बताया जाता है और उनके आपसी संबंधों पर रोशनी डाली जाती है।
2: रेडियो नाटक सब विधाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आवाज पे बेस्ड है और ये किसी भी एक्टर की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है। क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आवाज से खेलकर अपने सारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है और आपको ये भी पता चलता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। और ये आपका बाकी विधाओं में भी काम आता है, चाहे आप फिर आप स्टेज पे जाएं, चाहे आप कैमरा के आगे जाएं। और मतलब जैसे खुद का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे आज तक किसी ऑडियो के आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाइए, मैं कैमरा की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए क्योंकि मैं आप आवाज के जरिए अगर आप कन्वे कर पाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है।
1: रेडियो नाटकों के अलग अलग रूप हैं, पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक वगैरह। मोनोलॉग या स्वगत नाटक, मोनोलॉग का अर्थ है वो नाटक जिसमें एक ही पात्र बोलता है, इसे स्वगत नाटक और एक पात्रीय नाटक भी कहते हैं, इसमें केवल एक पात्र रहता है। आइए सुनते हैं एक पात्रीय नाटक पन्ना धाय का एक अंश।
3: सांझ पड़े नकरे छड़ी।
4: पन्ना देख कहाँ है? हाँ,
5: तुम यहाँ क्या करने आए हो?
4: क्या करने आया हूँ? मैं उस बीज को नष्ट कर दूंगा, उससे पहले पेड़ बन के वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने, मैं उसे समाप्त कर दूंगा।
5: तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते, तुम तो उसके संरक्षक हो। नहीं, मैं उसकी शैया के पास से नहीं हटूंगी।
1: रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों में पद्य नाटक का भी बहुत अहम रोल होता है, इसे काव्य नाटक या गीति नाटक भी कहते हैं। पद्य नाटक की विशेषता को समझने के लिए गद्य नाटकों और पद्य नाटकों के अंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गद्य नाटकों की अगर हम बात करें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने का माध्यम है, हमारे चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आइए सुनते हैं पद्य नाटक ब्लैक होल का एक अंश।
6: मैं काल हूँ, पता नहीं कब जन्मा मैं, ये भी नहीं जानता कि रहूंगा कब तक। मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उनके असंख्य रहस्य।
7: नहीं पहचाना? अरे, इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने आपके पास उड़कर आ गई हूं, इसी अनंत शून्य के अंधकार से। कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और हमारे आपके जैसे साधारण जन भी, मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी, है ना? कुछ से कहीं अधिक असाधारण, कहीं ईश्वर ही तो कल्पना नहीं, अर्थात कल्पना का ईश्वर, मेरा ईश्वर।
1: जाने माने कलाकार

0: और रेडियो नाटकों से जुड़े हुए श्री योगेंद्र टिक्को अपनी यादों को बांटते हुए।
1: मैं काफी सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कुछ ऐसा भी है कि मैंने बाकी सारे माध्यम में भी बहुत काम किया है, अलग अलग विभिन्न माध्यमों में, टीवी हो, फिल्म्स हो या थिएटर हो, सबसे जुड़ा हूं मैं। मगर जितना सुकून और सुख मुझे आकाशवाणी पे ड्रामा करके मिलता है, वो मुझे और कहीं शायद उतना नहीं मिलता, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और आसान नहीं है। ये एक तरह से आपकी कलाकारी को मांझता है, आपको परिपक्व करता है, ताकि आप जब आपकी वॉइस एकदम स्ट्रांग होती है, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो आप किसी भी माध्यम में जाके, चाहे वो फिल्म्स हो, टीवी हो, थिएटर हो, कहीं पे भी जाके आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली कहूंगा कि मुझे अच्छे प्लेस करने का मौका मिला है।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ।
2: वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जहां से हम तकरीबन आर्टिस्ट गुजरे हैं, लेकिन इससे गुजरने पर एक ये एहसास हुआ कि सिर्फ आवाज के माध्यम से और एक ध्वनि का जो एक अलग अपना एक इफेक्ट होता है, उसके थ्रू एक कंप्लीट एक दृश्य को पूरे जहन के अंदर उतार के रख देना, मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग थिएटर में बैठ करके थिएटर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक मंचन और उस तरह का दृश्य प्रारूप जो है वो मन में और दिमाग में उतरता चला जाता है। हालांकि ये विधा मुझे बाकी विधाओं से थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो एक सुकून और एकाग्रता एक का जो संगम नजर आता है वो अलग तरह का है।
0: कई नाटक संगीतमय नाटक होते हैं जिनमें कहानी के साथ साथ नाटक के साथ साथ संगीत और गीतों का भी मिश्रण होता है, जो सुनने में श्रोताओं का मन और ज्यादा लुभाते हैं। आइए अब सुनते हैं संगीतमय नाटक मिर्जा साहिबा का एक अंश।
3: साहिबा से मुझे मिलवा।
4: तो ये बात है, जानती थी, तब से जानती हूँ, जब तू मस्जिद से घर लौटता हुआ मासी के घर साहिबा को मिलता था। मैंने तो अल्लाह से कई बार दुआ मांगी कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। चल चल मेरे साथ चल।
3: चल मासी, चल चल।

0: ये था यादों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला। आज रेडियो नाटक कितनी सीढ़ियां पार करके यहाँ तक पहुंचा है और श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में अभी आप सुन रहे थे रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

श्रोताओं, लता और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। बात तो बिल्कुल सही कही है, जब मंजिल एक हो और राही दो तो प्यार तो होना ही है। कहते हैं ना, मिल बांट कर रास्ता कट ही जाता है। देखिए, बाधाएं तो आएंगी और उनका हल भी निकलेगा, बस साथ ही आपका बेहतर होना चाहिए। और इसीलिए जब भी अपनी मंजिल की ओर आप आगे बढ़ें तो अपने साथी का चुनाव हमेशा सही करें और चलते चलें लहरों के साथ, ताकि पता ही ना चले कि दिन है या फिर है रात।

0: श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना साहिब फिल्म से लिया हुआ ये गीत। संगीत था बप्पी लहरी का। कहते हैं ना कि जीवन भी एक गाड़ी के ही समान है, जिसमें अगर हम पेट्रोल की बात करें या कहें कि ईंधन आपकी जिंदगी का जो है वो है आपकी ऊर्जा। जितनी ऊर्जा और आनंद के साथ आप इस जीवन को जिएंगे उतना ही मजा आएगा। और देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो बस धारा में बहते जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, जब आप खुद ही कहने लगेंगे कि चलती का नाम ही तो गाड़ी है। गाड़ी थम जाने पर जिस तरह से बेकाम हो जाती है, ठीक उसी तरह से जिंदगी भी है। चलती रहे तो फिर सब कुछ अपना, और जो थम गई तो फिर हर पल बस सपना।
1: अरे बम बम कक कक।

0: श्रोताओ, जितना मस्ती भरा ये गीत है ना, उतना ही मस्ती भरा जीवन आपको अपना जीना है। और इसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी

0: दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों

0: का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से

चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Concluded in New Delhi today. The discussions were held in accordance with the terms of reference signed by the trade ministers of both countries on the 2nd of March this year. Ministry of Commerce and Industry said the negotiations witnessed constructive and productive engagement between the two sides. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today stated that the India-Trinidad and Tobago relationship reflects a unique convergence of history, human connection and shared aspirations. He stressed that in this increasingly turbulent and unpredictable world, these ties must use their deep complementarities to evolve into a pillar of strength and stability for both countries. He said this in an op-ed in the Trinidad and Tobago Daily Express newspaper. Raksha Mantri Rajnath Singh has said the national security goes beyond border protection and includes the safety of society, environment and citizens. Addressing an event marking 10 years of Tiranga Mountain Rescue with the Indian Army in New Delhi, he said a strong India ensures secure borders, confident communities and protecting of lives during disasters. He added that Tiranga Mountain Rescue has become a key support system for the armed forces and local communities in the Himalayas. Health Ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of the hantavirus cases. Sources said the Health Ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of hantavirus infection on board the cruise ship MV Hondius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization and other international health authorities. Sources stated that as per preliminary information shared through the WHO under the International Health Regulation Framework, a total of 8 probable cases of hantavirus infection have been reported on board the vessel, of which 5 cases have been laboratory confirmed. 3 deaths have also been reported. WHO was notified of the incident in the first week of this month. In view of the evolving situation, the Public Health Emergency Operations Center under NCDC convened a high-level review meeting involving senior officials to assess the situation and review preparedness measures. Government has said domestic LPG supply across the country is smooth and no dryout have been reported at any distributorship. Addressing an interministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. Director of the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the government continues to engage with every stakeholder to ensure the welfare of all Indian seafarers and uninterrupted maritime operations.
1: All Indian seafarers in the region are safe and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. The Ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported.
0: Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that the government continues its outreach to countries in the Gulf. He informed that as part of that, Foreign Secretary Vikram Misri paid an official visit to UAE yesterday. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force, IAF, have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden-flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defence capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Fong Yu Zhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal to move within one win of her maiden World Cup medal. Simranjeet will now face world number one Kang She-young of South Korea in the semi-finals. Indian women's recurve team has already assured the country's first medal in the tournament with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-final yesterday. In football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asia Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in the final Group B fixture at Suzhou in China today. For India, Preetika Burman in the 7th and 85th, Alva Devi Senjam in 36th, and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-final of this tournament would guarantee India's spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. And in IPL cricket, Delhi Capitals have set a target of 143 runs for Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi. Put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बायबाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनक़िदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक़िद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
4: आज सुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इदाराजाती बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
2: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल

0: सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सीईओ की गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली है, अरकान कानून साज असेंबली है कांग्रेस के 5, जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज टीवी के पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवी के की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनुष्यात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवाद की सूरतहाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया, जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनुष्यात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनुष्यात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनुष्यात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जबकि मनुष्यात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये मौशरे, माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नजर कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई, जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का अदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए।

रणजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंग यू जू को सीधे सेटों में 0 के मुकाबले 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की किम जोंग से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: تیرا قاصاں نے کاتاک اتخاذ کر دی دے می باشد پیری سلامی فریاد آنچل محبت حسن گھونگت محبوب ناز کرشمہ جادو محبوب برق و حرکات متعدد دیگر برائیے سب کے رقص کاتاک معرفی ساخت شد مازا سب کے مذکور اصلا محدود بے مکتب افکار گردید دو مکتب اصلی رقص کاتاک در ہندوت کے عبارت است از لکھنؤ گرانہ و جے پور گرانہ مکتب اول تحت سرپرستی نواب واجد علی شاہ از لکھنؤ روشد یافتے درہاری کے مکتب دیگری توسط حکمرانہ نے جے پور جودھ پور بیکانیر در راجستھان پشتی بانی شد برخلاف رقصائی کلاسی کی دیگر مانند بھارت ناتیم کاتاکلی و یا مانی پوری کے مشکلات اساسی شنڈا نگہداری کردن نیمے نیمے روئے ہم افتادگی زیادی در سبوخا یہ رقص کاتاک در ہن وجود دار
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپات لایت On the first anniversary of Operation Sindoor, now we bring you a special program on India's firm response against terrorism and unparalleled valor of Indian armed forces. On the intervening night of 6th and 7th May 2025, when the world was sleeping, Pakistan was jolted out of sleep and caught off guard. The skies roared and the missiles screeched over the terror camps of Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. For 22 minutes, the sky was lit by the commitment of India to safeguard every inch of its territory, be it land, air or water. The commitment to track and hunt down terrorists came directly from the Prime Minister.
3: ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड इंडिया विल आइडेंटिफाई ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर
2: Every missile that was fired carried the sole objective of punishing the perpetrators of terror. At 1:44 a.m. on 7th of May, the government announced that it had hit the terror targets across the border. The exact words read,
4: A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted.
2: 100 terrorists were killed in the strike. Immediately after the information was released by the government, news was broadcast by Akashwani as well.
5: इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है
6: Indian Armed Forces launched Operation Sindoor post midnight hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
7: भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया
8: Indian Army carries out military operation Sindoor on 9 terror targets of Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir.
2: Foreign Secretary Vikram Misri, while briefing the media about the operation, announced that India's response was focused, measured and non-escalatory in nature.
9: Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt, as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure.
2: What followed was unprecedented in the history of the nation. India struck again and reached hundreds of kilometers into mainland Pakistan without even crossing the border. Defense Minister Rajnath Singh, while speaking about the operation, said,
10: "हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर गुरुद्वारा गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावल पिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है
2: India's retaliatory response was unimaginable for the enemy. It was triggered by the deadly Pahalgam attack. On April 22nd, terror struck Pahalgam. Pakistan-backed attackers stormed a village, asked people their religion and killed them, resulting in the death of 26 people. It was a clear attempt to incite communal violence. This marked a shift from cross-border attacks to dividing India from within. In response, India launched Operation Sindoor to destroy the terror bases behind the attack. But Pakistan hit back harder. Over the next week, it used drones and shelling to target religious sites, the Shambhu Temple in Jammu, the Gurudwara in Poonch, and the Christian convents were attacked. These were not random strikes. These were part of a plan to break India's unity. To safeguard the honor of the nation, its military prowess roared. 11 major air bases were targeted.
11: Main Colonel Sofia Qureshi, POJK, ke targets main aapko batana chahungi. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद गुलपुर कैंप कोटली बरनाला कैंप भिंबर अब्बास कैंप कोटली अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी पहला सरजल कैंप सियालकोट दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट मरकज ताइबा मुरीद के मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर
2: इंडिया काउंटर्ड द एनिमी ऑन मल्टीपल फ्रंट्स द बैटल वॉज नॉट जस्ट ऑन द बॉर्डर्स इट वॉज ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर दैट वॉज बींग फॉट The officers of the Indian Armed Forces briefed the media every day. Air Marshal A.K. Bharti, while briefing the media, informed about why 11 air bases were chosen.
12: This was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems, across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakhar, sending a clear message that aggression will not be tolerated.
2: Nearly 20% of Pakistan's air capability was degraded before they could mount a response. This wasn't just about force. It was precision at a completely different level. Rafales, advanced strike systems and indigenous AI-enabled networks worked in perfect coordination, intercepting every incoming threat with speed and accuracy. Operation Sindoor was a significant demonstration of India's military and strategic power, executed through a combination of military and non-military means. This multidimensional operation effectively neutralized India's terrorist threats, deterred Pakistani aggression and firmly enforced India's zero-tolerance policy towards terrorism. The operation maintained strategic restraint while gaining international support.
13: भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर उन

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना

0: हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनल ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की। इस बीच डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से राज्य में नई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आग्रह किया है। श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूजो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद महल का ये गीत, आवाज येसुदास की।

लीजिए, अब आपको सुना रहे हैं फिल्म आनंद का गीत, लता मंगेशकर की आवाज है।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म आनंद में, और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मधुमति से।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक

0: उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच की शिकायत की है। इस बीच मुन्नारकुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी सरगर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एड्डापाडी पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Subendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Subendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP

0: अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। और लीजिए अब सुनिए समाचार। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी।

0: गहन जांच करने की शिकायत की है। इस बीच नारकड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी गर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना समर्थन शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह बात भी कही कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एडपड्डी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
3: Vidhan Mandal Dal ke neta ke roop mein nirvachit ghoshit karta hu.
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister-designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor turned politician is all

वाकई बहुत ही खूबसूरत एहसास है जिंदगी की राह में जब हम इतनी दूर चले आते हैं, इतना लंबा वक्त जो है तय करते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ खड़ा हो हर लम्हों में, हर परेशानियों में, हर खूबसूरत मोड़ पर, हर दुख के उस मोड़ पर भी वो एक छांव की तरह हो। ऐसा ही साथ हर किसी को मिले, ये तो दिल से दुआ जो होती है वो सबके लिए ही होती है। कहते हैं ना कि हम सफ़र ऐसा चुनना चाहिए कि जो सिर्फ रास्ता ना दिखाए बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने में आपका पूरा पूरा साथ निभाए। कहते हैं कि हम सफ़र वो है जो हर मोड़ पर साथ निभाता है। बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल आप सुन रहे थे, आवाज़ जगजीत सिंह की। आइए सुनते हैं गज़ल गीत के इस प्रोग्राम के तहत ओला मलिक की आवाज़ में ये दूसरी गज़ल।

प्रोग्राम गज़ल गीत में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल। आइए सुनते हैं अगली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: गजल गीत का प्रोग्राम यहीं संपन्न कर रहे हैं। आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गजल मेहदी हसन की आवाज में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रात भर ईरानी सेना के साथ हुई गोलीबारी के बाद अमरीकी सेना ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। इन हमलों में उस युद्ध विराम का सवाल खड़ा कर दिया है जिसके बारे में अमेरिका अब भी प्रभावी होने का दावा करता रहा है। अमेरिका युद्ध समाप्त करने, जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान की विवादित परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुने येल्ला वेंकटेश्वरा राव का मृदंगम वादन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना येल्ला वेंकट स्वरा राव का मृदंगम वादन। गायन था मदिरी मंगलम रामा चंद्रन का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानकारी लेंगे योग पवन मुक्त आसन और सेतुबंध आसन की। इसके बाद आप सुनेंगे 5:20 पर देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी हम आपके लिए प्रसारित करेंगे सुबह 5:30 पर। 6:10 पर आप सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन में आज का विषय है धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा। रामचरित मानस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 पर। इसके अलावा 7:10 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमृता दत्ता के गाए कुछ भजन गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानेंगे थैलेसीमिया डे के बारे में। 9:15 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम धरती आकाश मिट्टी दी महक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर। कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा सुबह 11:10 पर। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का गायन। महिला कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 1:10 पर। आज की फिल्म है हरिनामा हरे कृष्णा। इसके अलावा 2:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं तलत महमूद ब्रज माधुरी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:03। कार्यक्रम बोलती कहानियां, इसका प्रसारण समय रहेगा 3:30 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो आपको मनोरंजन तो करेंगे ही साथ में ज्ञानवर्धक भी हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल कोलकाता में श्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। मौसम विभाग ने कल से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Suvendu Adhikari will take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. PM Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier yesterday, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The legislature party meeting was held in Kolkata in the presence of Home Minister Amit Shah. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in favour of Suvendu Adhikari. Following his election as BJP legislature party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Puducherry, the National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashnathan and staked claim to form the next government. Mr. Rangasamy handed over letters of support from the majority of MLAs to the Lieutenant Governor. The Defence Research and Development Organisation and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation (TARA) weapon off the coast of Odisha on Thursday. TARA is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision guided weapons. Consulate General of India in Dubai has expressed grief at the death of an Indian crew of a ship who died at sea. In a social media post, the Consulate General termed the incidents as unfortunate, saying it is in touch with the owner of the ship and is ascertaining further details. The consulate assured that it will render all possible assistance in this matter on priority. The maritime confrontation in the Gulf intensified yesterday as Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed to have captured an oil tanker in a special operation in the Gulf of Oman, even as U.S. Central Command said its forces disabled two Iranian-flagged tankers attempting to enter Iranian ports in violation of the ongoing American naval blockade. CENTCOM Commander Admiral Bradley Cooper said U.S. forces remain committed to full enforcement of the blockade of vessels entering or leaving Iran. The escalation came on the same day the UAE Ministry of Defense confirmed its air defense systems successfully intercepted two ballistic missiles and three drones launched from Iran, resulting in three moderate injuries on the ground. The incidents follow overnight U.S. strikes on Iranian military facilities and exchanges of fire in the Strait of Hormuz that have pushed the fragile ceasefire to breaking point. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on May 14 and 15. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both countries. Discussions are expected to address the delineation of borders, concrete pathways for humanitarian relief and reconstruction, and the full restoration of Lebanese sovereignty throughout its territory. U.S. President Donald Trump has announced a 3-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations, commemorating the then Soviet Union's role in World War II. In a post on social media, Trump said the ceasefire would take place from May 9 to 11 and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. And that is the end of this news bulletin.

है। आइए सुने कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग पवनमुक्त आसन और सेतुबंधासन की।

तो मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी, जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटने